अगर आप डेटिंग ऐप पर किसी को मिले हो, देन देयर इज दिस वन सिंगल रूल, अगर आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री इज नॉट ऑन पॉइंट, आप उस बहुत ही अडोर्ड बंदे को अपनी किसी दूसरी फ्रेंड के लिए साइफन ऑफ स्लैश मार्केट नहीं कर सकते हो. नाउ मेरा इंटेंशन तो ये था व्हेन आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप कि यार तेरी मेरी दोस्ती अच्छी हो गई है, बट हमारे बीच में ऐसे वो क्रंची केमिस्ट्री नहीं है, तो वाई डोंट आई इंट्रोड्यूस यू टू माई अदर बेस्ट फ्रेंड, वो भी सिंगल है, और हो सकता है तुम दोनों के बीच की शिपिंग सही बैठ जाए. लेकिन इस बंदे को अपेरेंटली बहुत राइटली सो बुरा लगा दैट मैं अपने गुड्स फ्रॉम अ डेटिंग ऐप किसी और इंसान को पास ऑफ कर रही थी. एंड आई सेड यार मैं पास ऑफ नहीं कर रही थी, तू बढ़िया बंदा है, मेरी बेस्टी बढ़िया बंदी है, शी इज ऑल्सो सिंगल, यू आर ऑल्सो सिंगल. ही वॉज लाइक दैट डज नॉट मीन जस्ट बिकॉज हम दोनों की केमिस्ट्री नहीं है तू मुझे किसी और को हैंड ओवर कर देगी. भाई बट मेरा इंटेंशन तो यही था कि दोनों खुश हो जाएंगे, जब भी मुझे अपनी बेस्टीज से बात करनी होगी दोनों एक ही घर में होंगे. बट अपेरेंटली इट इज़ ट्रू दैट द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस. अगर मेरी तरह आपने भी अपनी जिंदगी की दोस्तियों के कबाड़े अनविटिंगली किए हैं, आई डोंट वी कंपेयर नोट्स, क्योंकि ले दे के शायद आप ही मेरे दोस्त बचोगे जिंदगी में. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHI.

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabbala. Murga, murga. La virba la murga. Mirci, murga.
1: हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
1: नहीं,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: The reason you're sticking on with your girlfriend is because aapko uski mummy secretly hot lagti hai, but main iske bare mein kisi ko nahi bataungi. Promise.
3: The secret box.
2: Also because of secret box hai, agar aapke paas ek aisi confession hai, feel free to hit me up on Insta ya FB. Mera naam chhe Mirchi Roshi, kaam chhe aapse pyar karna, naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. Send me your confession with your number all in one message and I'll call you like I call my mystery caller. Hello mystery caller.
4: हाय रोशनी,
2: गेम शो
4: ठीक हो? ठीक हो,
2: अच्छे.
4: मुझे आपसे कुछ शेयर करना है.
2: करो ना.
4: तो मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा, काफी अशेम्ड भी हूँ मैं ये बोलते हुए, पर आई डोंट नो हाउ टू से. सो मेरा बॉयफ्रेंड एंड आई वर टॉकिंग एंड आई वाज ड्रंक ऑन दैट कॉल एंड काफी ड्रंक, मतलब आप समझ लो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ. एंड देन वी केप्ट टॉकिंग, इट एंडेड अप इन अ फाइट और काफी आर्ग्यूमेंट हो गई. बहुत बुरा भला बोल दिया यार, प्रॉब्लली मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोल दिया. एंड देन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया.
2: ओके, व्हिच इज फेयर.
4: एंड या आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम बिकॉज आई डिडंट वांट टू हैव एनी फर्दर कन्वर्सेशन. बट नेक्स्ट डे The whole day I kept waiting for his call without realizing कि मैंने उसे block कर दिया.
2: Oh babe, that's so dumb. Sorry.
4: I know, I told you, मैंने पहले बोला था. I felt ashamed while ashamed and weird that how can you I be so stupid.
2: तो आपको पता कैसे चला कि लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज दैट एक सेकंड ही कांट कॉल मी क्योंकि मैंने ही उसे ब्लॉक किया है?
4: या मतलब ये सब हुआ जब आई स्टार्टेड टेक्स्टिंग हिम. ओके, बिकॉज़ टेक्स्ट सो यू कैन स्टिल डू. सो मैंने टेक्स्ट किया उसे कि तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है, इतनी लड़ाई हुई है एंड यू डिडंट इवन केयर टू कॉल मी. एक बार तो दिन में फोन कर सकता था तू. व्हाई वुड यू नॉट. और उसने बोला बेबी तुमने मुझे ब्लॉक कर
2: दिया. मैं मर जाना चाहती हूँ हंसते हंसते. देयर कुड नॉट हैव बीन अ बेटर कन्फेशन देन दिस. यू पुअर थिंग यार, आई एम फीलिंग सो बैड.
4: रोशी, आई वुड सजेस्ट आप माइक ड्रॉप कर दो क्योंकि आई एम श्योर के बाद कुछ बोलने को है नहीं.
2: ऐसे कैसे बेबी डॉल माइक ड्रॉप है ना कुछ करने के लिए. ये रहा,
0: यू've बीन रोशिफाइड.
2: You should feel a little bit better, nahin, don't you think?
4: Yeah.
2: Agli baar na, when you're getting drunk, just make sure that if you're blocking someone, you should write it down somewhere. Post it par, aur usse chipka dena apne bathroom ke mirror pe, taki agle din when you recover your senses, you will know what you've done. It was amazing talking to you, mystery caller. You're the best. Seriously.
4: Thank you.
2: Oh God, thank you. और अगर आप भी ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह absolutely crazy AF हैं, you are totally a part of the tribe, man. So hit me up on Insta या FB and we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, मैं हूँ आपकी ब्रोशी. नाम के स्पेलिंग R-O-C-H-I-E. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज

बाहर कितनी भी गर्मी हो, दिल सिर्फ गर्मी से पिघलते नहीं हैं, दिल प्यार से पिघलते हैं. और मेरे एक्स ने रिसेंटली क्या काम किया है, मेरी आंखों से प्यार के आंसू निकलने लग गए थे भाई. उसने एक कार्डबोर्ड का पीस मंगाया, उसके ऊपर उसने कलर किया क्रेयॉन से पर्पल, और उसके ऊपर उसने ब्लैक एंड रेड क्रेयॉन से लिखा मुझे, एंड ऑफ कोर्स पोर्टेड इट टू मी विच सेड, यू आर माय ट्रू नॉर्थ स्टार, एंड एक हार्ट हार्ट हार्ट हार्ट. एंड आई वाज लाइक, हे भगवान, इसने अपने हाथों से कार्डबोर्ड मंगा कर, क्रेयॉन्स मंगा कर, अपनी भद्दी हैंड राइटिंग में इतना प्यारा लेटर लिखकर भेज दिया. भगवान, क्या मुझे इसे फ़ोन करके वापस इसके पास चले जाना चाहिए. एंड बिफोर आई कुड डू दैट, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन कर दिया एंड मेरे सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया, बिकॉज माई मॉम इज़ माई वॉइस ऑफ रीज़न. लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके एक्स ने कुछ अनएक्सपेक्टेडली अडोर्ब्स किया एंड यू जस्ट विश यू वर बैक इन द रिलेशनशिप विद देम जस्ट फॉर दैट वन स्मॉल जेस्चर? अगर हाँ, देन यू एंड आई आर प्रेटी सिमिलर, वी शुड प्रेटी मच कंपेयर नोट्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, फाइंड मी ऑन योर सोशल मीडिया एंड व्हाइल यू डू दैट एंड हिट मी अप, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Roshi Baba Ki!
3: काम डाउन माय भक्तजनो, क्या तुम्हारे बॉस ने इस बार भी तुम्हें फिर से सिरदर्द दे दिया? एंड नाउ यू डोंट नो कि इस सिरदर्द के साथ आप डेट पर कैसे जाओगे? डोंट वरी अबाउट इट, आपको दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मेरी ये होम रेमेडी ट्राई करके देखो। आई हैव अ फीलिंग दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। एक कप पानी में काफी सारा जिंजर यानी कि अदरक, इसे कद्दूकस करके उबाल लो। एंड ये बहुत ही पोटेंट जिंजर ड्रिंक गर्मा गर्म एज अ जिंजर टी पी लो। चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके देखो, बिकॉज रिसेंटली साइंस ने इसे कंफर्म कर दिया है कि जिंजर की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एक्चुअली हेल्प यू डील विद पेन इन अ वे फास्टर मेथड एंड अ क्लेवरर विदाउट द यूज ऑफ मेडिसिन वे। एंड बिफोर यू नो इट, ना कि सिर्फ आपका सर दर्द भाग जाएगा, बट योर बॉडी विल फील सो रिलैक्स दैट आपकी डेट फ्रॉम जस्ट अ नॉर्मल गुड डेट विल बिकम अ परफेक्ट डेट। और जब ऐसा हो जाए, मुझे थैंक यू बोलने के लिए फॉर दीज टू थिंग्स, यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE। यू कैन ऑल्सो कॉल मी योर रोशी बाबा। एंड वाइल यू हिट मी अप, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, It's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, sakabana, rabana, burka, burka. Na vid bala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड कर रहे हैं एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
2: हैं जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवा।
2: क्या मजाक कर रहा है?
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: तुम्हारे दिल के साथ तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग के साथ कौन कौन खेलता है? आई वुड सजेस्ट वी शुड प्ले अ गेम वेयर आई गेट टू टेस्ट योर ब्रेन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. मैंने अभी जो बोला है ना, ऐसे लग रहा है मैं आपका दिमाग आपके लिए खोपड़ी से निकाल के लैब में टेस्ट करूंगी. ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट प्लेइंग अ लव गेम विद यू. इफ यू आर इंटरेस्टेड सेंड मी योर नंबर एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल्ड ईश्वर. हाय ईश्वर.
3: हाय.
2: क्या आप मेरे साथ लव गेम खेलने के लिए तैयार हो?
3: आगे.
2: अच्छा, तो आज ना मैं तीन सवाल पूछूंगी, यस और नो में आपको जवाब देना है, ट्रूथ और डेयर है, ठीक है?
3: Okay.
2: आपका पहला सवाल है और आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. मीरा राजपूत की जो क्रश था, ठीक है, उन्होंने उससे शादी की और उस क्रश का नाम है शाहिद कपूर. ट्रू या फॉल्स? है
3: True.
2: ये तुक्का मार रहे हो या पता है आपको?
3: ये तो पता है मुझे.
2: अच्छा, सो बेसिकली मीरा राजपूत जब बड़ी हो रही थी, शाहिद कपूर की पिक्चरें देखती थी, शी वाज टोटली इन लव विद हिम. उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि शाहिद कपूर से शादी हो जाएगी. आपको मीरा राजपूत अच्छी लगती है?
3: नहीं.
2: आपको शाहिद कपूर अच्छा लगता है?
3: नहीं.
2: तो आपको ऐसे फालतू की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पता होती है फ्री फंड में, करेक्ट?
3: ये ड्यू टू इंस्टाग्राम.
2: ओके, लेट्स टेस्ट योर नेक्स्ट लाइक बॉलीवुड नॉलेज, ठीक है? आपका अगला सवाल है, सैफ अली खान और करीना कपूर की अरेंज्ड मैरिज हुई थी, ट्रू और फॉल्स?
3: फॉल्स.
2: असलियत क्या है?
3: उनकी लव मैरिज हुई थी ड्यूरिंग टशन मूवी, उनका अफेयर स्टार्ट हुआ था और आई गेस उसके कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो गई थी. अभी उनके दो बच्चे हैं, एक उनका क्या तैमूर, दूसरा शायद नाम नहीं पता मुझे.
2: Bro, you are like a typical Bollywood ki chachi ji, man. Like, you know everything there is to know about this. Like, tune to sara chitta suna diya. Saif ki kundli ye hai, Kareena ki kundli ye hai, inke 36 mein se 22 gun milte hai. Whoa! You are very close to Roshification. Teesra sawal poochu aapse.
3: Yes, sir.
2: Gauri Khan ke parents were against her marrying Shah Rukh Khan because unka religion alag tha.
3: I guess too.
2: Tukka maar rahe ho na?
3: Ye tukka.
2: आई लव योर ऑनेस्टी. तो हाँ, ये सच बात है. गौरी के डैड जो थे वो बहुत ही लाइक यू नो स्ट्रिक्ट हिंदू थे और उनके घर में प्रॉपर मंदिर वंदिर था एंड ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द मैरिज. और इन्होंने अपने शादी को काफी समय तक छुपाया भी था और शाहरुख ने सोचा था कि अपना नाम भी बदल देगा एंड वो अपना नाम बदल के भी गया टू कन्विंस द पेरेंट्स कि यार प्लीज गौरी से शादी करने दो, विच इज अ वेरी क्यूट लव स्टोरी, डोंट यू थिंक? आप प्यार में किस हद तक जा सकते हो ईश्वर?
3: मैं प्यार में किस हद तक जा सकता हूँ? मैं प्यार में इस हद तक जा सकता हूँ कि जिससे प्यार करता हूँ उसे छोड़ के जाओ तुम खुश रहो, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती
2: है. ये हो चुका आपके साथ? यार दैट्स टेरिबल. रोशिफाई कर दूँ आपको?
3: हाँ बिल्कुल.
2: यार
0: यू हैव बीन रोशिफाइड.
2: You know what, Ishwar, you are my kind of guy. अगर मैं आपकी जगह होती मैं भी यही करती. I love you.
3: Thank you so much.
2: Love you के लिए thank you नहीं बोलते बे. Happy birthday बोला तुझे. बोला I love you too.
3: Okay, I love you too.
2: Thank you very much. I said thank you.

में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर एक बार चीट कर चुकी है और मैं फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि हमारे रिलेशनशिप का जो ट्रस्ट है रोशी, वो वापस आ जाए?
0: रोशी के डीएम से
2: साहिल ने मुझे ये मैसेज लिखकर भेजा, एंड साहिल, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट जब एक रिलेशनशिप में यू फाइंड आउट दैट योर पार्टनर हैज चीटेड ऑन यू, वो भले ही एक मोमेंट्री लैप्स ऑफ रीजन क्यों ना हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन ट्रस्ट आफ्टर दैट. लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जो कुछ भी हुआ, फिर भी इसके बावजूद यू गाइज आर ऑन द सेम टीम? एक तो ये चीज, दूसरी ये, क्या आप विलिंग टू फॉरगिव एंड मूव ऑन हो या नहीं? क्योंकि अगर आप उसे फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो और आप सिर्फ ये फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द रिलेशनशिप वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं द बिटरनेस विल कम बैक लेटर. सो यू हैव टू फिगर आउट कि क्या फॉरगिवनेस आपके दिल और दिमाग में हो चुकी है या नहीं. तीसरी चीज, जब आपकी गर्लफ्रेंड ये कहती है दैट वो एक मोमेंट्री लैप्स ऑफ रीजन था, ये कभी फिर से नहीं होगा, हाउ सिंसेयर इज शी? आपको कितना यकीन है कि वो जो कह रही है वो अपने सच्चे दिल से कह रही है? चौथी चीज, कई बार ना जिंदगी में, ये मेरी मम्मी कहती है, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जाने देना चाहिए. हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलतियां सब करते हैं, बट इट्स वाइजर टू लुक अहेड दैन टू लुक बिहाइंड एंड फील बैड अबाउट वॉट हैपन. एंड लास्टली, ऑनेस्टली, अगर आप चाहते हो ना कि आपका रिलेशनशिप इन स्पाइट ऑफ दिस लिटिल ग्लिच चल जाए, डोंट ओवर थिंक इट. इसके बारे में इतना मत सोचो कि पूरा का पूरा रिलेशनशिप छोटा पड़ जाए इन द फेस ऑफ व्हाट हैपेंड विद योर गर्ल एक बार. इफ़ यू आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फिर आई थिंक कि आपके रिलेशनशिप में एक और चांस अभी भी जिंदा है. गिव इट दैट वन चांस, क्योंकि ऑनेस्टली हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. और अगर आपकी जिंदगी में प्यार है साहिल की तरह, बट यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने नोटिस किया है कि हर ब्रेकअप के बाद हर इंसान कुंभकर्ण की छठी औलाद बन जाता है। ब्रेकअप के बाद इतनी नींद आती है बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट टू बी अवेक एंड फेस द फैक्ट कि आपकी सर्विसेज एज अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड टर्मिनेट कर दी गई है। बट द लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था फाइनली जब मैंने सोना खत्म किया अपने बॉयफ्रेंड पर कि आई डिसाइडेड कि मैं उसे एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखूंगी। इट हेल्प्स दैट आई बीन अ जर्नलिस्ट और मैंने इसे ना 5 पेज की चिट्ठी लिखी और पहले मैंने सोचा कि मैं उसे जब वी मेट के फैशन में फाड़ वाड़ के फ्लश कर दूंगी। देन आई थॉट क्यों फ्लश करूंगी, इतनी प्यारी इतनी दुख भरी इतनी एसिडिक चिट्ठी है। उसके पोस्टल एड्रेस पर वो चिट्ठी मैंने पोस्ट की विद सम ऑफ आवर मोस्ट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स टुगेदर एंड ट्रस्ट मी आई नो फ्रॉम कॉमन फ्रेंड्स कि वो चिट्ठी पढ़ने के बाद ही वो सेकंड गैसिंग की यार अब मैं रोशी की जिंदगी में वापस कैसे जाऊं। बट उस चिट्ठी ने कमाल कर दिया था एंड आई डिड नॉट वॉन्ट हिम बैक। तो अगर आप भी ऐसे नींद के दौर में गुजर रहे हो आफ्टर योर ब्रेकअप एंड यू रियली वॉन्ट टू हील योर हार्ट, चिट्ठी लिख डाल और पोस्ट कर डाल एंड वंस यू फील हैप्पी AF, मेरे साथ ये अच्छी न्यूज शेयर नहीं करोगे? और वो करने के लिए यू कैन फाइंड मी इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Hello,
2: Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर, मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाइए.
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? है ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
2: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा.
1: सुन ले बात,
2: मेरी बात
1: हाँ. सुन पहले बात.
2: हाँ सर.
1: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है. सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर.
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Mirchi Morga na Vedke Sat. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, I got
0: Mirchi.
2: R-O-C-H-I-E.
0: Roshi, Roshi. Mirchi Roshi.
3: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: The reason you're sticking on with your girlfriend is because आपको उसकी मम्मी secretly hot लगती है, but मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, promise.
5: The secret box.
4: Also because of secret box है, अगर आपके पास एक ऐसी confession है, feel free to hit me up on Insta या FB. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना, नाम के spelling है R-O-C-H-I-E. Send me your confession with your number all in one message and I'll call you like I call my mystery caller. Hello mystery caller.
6: हाय रोशी,
4: गेम शो
6: ठीक हो? ठीक हूँ.
4: अच्छे,
6: मुझे आपसे कुछ शेयर करना है.
4: करो ना.
6: तो मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा, काफी अशेम्ड भी हूँ मैं ये बोलते हुए, पर आई डोंट नो हाउ टू से. सो मेरा बॉयफ्रेंड एंड आई वर टॉकिंग एंड आई वाज ड्रंक ऑन दैट कॉल एंड काफी ड्रंक, मतलब आप समझ लो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ. एंड देन वी केप्ट टॉकिंग, इट एंडेड अप इन अ फाइट और काफी आर्ग्यूमेंट हो गई. बहुत बुरा भला बोल दिया यार, प्रॉब्लम मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोल दिया. एंड देन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया.
4: ओके, व्हिच इज फेयर.
6: एंड या आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम बिकॉज़ आई डिडंट वांट टू हैव एनी फर्दर कन्वर्सेशन.

आता है ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: अब ये पीयूष मिश्रा भी मेरा दिल लेकर ही मानेंगे, उन्होंने ये लाइंस लिखी हैं, जरा गौर फरमाइएगा। औकात नहीं थी जमाने में जो मेरी कीमत लगा सके, ध्यान से सुनना हाँ, औकात नहीं थी जमाने में जो मेरी कीमत लगा सके, कमबख्त इश्क में क्या गिरे, मुफ्त में नीलाम हो गए। अगर आपको भी जिंदगी में ऐसा ही लगता है ना, तो सही जगह पहुंचे हो आप, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों बैठकर पूरी रात इस पॉइंट से कल सुबह तक प्यार के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है दैट्स ट्रू फॉर यू, देन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक। एंड व्हाइल यू डू दैट, दो चीजें जरूर याद रखना, पहली ये कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और दूसरी ये कि जिसके पास लव है उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोड्स।
1: आँखों ही आँखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, कोई खुस खुस खुस खुस, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए गुड़ गुड़ गुड़।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, usko maan se mat uthao, yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: तो मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और
2: पूरा
3: सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवा।
2: क्या कर रहा
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: Authentic, original, and better than our rival.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

हर कलाकार के दो चेहरे होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक चेहरा प्रोफेशनल लाइफ का, एक चेहरा पर्सनल लाइफ का, जिसे वो अक्सर छुपा छुपा के रखते हैं या उतना ही दिखाते हैं जिससे उनके प्रोफेशनल लाइफ के चेहरे पे कोई असर ना पड़े। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इस मामले में बिंदास निष्कपट होते हैं। वो जैसे पर्सनल लाइफ में होते हैं वैसे ही खुद को बताते हैं, और ऐसे ही कलाकार थे वो जिन्हें हिंदी सिनेमा का फर्स्ट शोमैन कहा जाता है, राज कपूर साहब, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ हिम। उनमें वो सारे फ्लॉज थे जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना। वो लेडीज से फ्लर्ट करते थे, कई बार फ्लर्ट करते करते लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। शादीशुदा होने के बावजूद उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स की, रिलेशनशिप्स के बारे में हम सबने पढ़ा सुना है, और उन्होंने इन सब बातों को कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत की वो था उनका क्राफ्ट, सिनेमा, जिसने उनकी आवारगी को एक सलीका दिया। वो शायर निदा फाजली की कुछ लाइन्स हैं कि बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
3: समाचार
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ।
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी।
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात से
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: ऐसे करता
4: होगा। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: अपने सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो,
3: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ
4: शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: आपको पता है डायरेक्टर अनीस बज़मी ने राज कपूर के साथ काम किया हुआ है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1982 की फिल्म प्रेम रोग में सेवेंथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे अनीस बज़मी। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर का कितना खौफ रहता था सेट्स पे।
1: बहुत ही टेरर था उनका, कब क्या होगा वही नहीं पता होता था। एंड थोड़े शॉर्ट टेम्पर भी थे, जब एडिटिंग करते थे तो वो शराब छोड़ देते थे एंड सिगरेट छोड़ देते थे। जब तक फिल्म एडिट होगी, चाहे वो एक महीना हो, दो महीना हो, दस महीना हो, और दोनों चीजों से बहुत प्यार था उनको, तो वो एक इरिटेशन लेवल भी जो है ना वो उस कदर होता था कि आप मतलब बस नाखून जितनी खाली गलती की थी और उसके बाद फिर आप अपनी दशा देखिए क्या होगी।
0: पर एक चीज जरूर होती थी, फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट्स पे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा डांट डपट मारपीट हो, बाद में मजा भी उतना ही होता था बिकॉज पार्टीज इतनी सारी होती थी कर्टसी राज कपूर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rg.charu, rg.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ये जो इंडिया का रशिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन तो राज कपूर साहब को भी जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो सीन कुछ यूं था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे रशिया और इंडिया के बीच अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे, बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, जिसकी वजह से इंडियन फिल्में रशिया में रिलीज हुई। एंड समहाउ राज कपूर के किरदार जो उन्होंने अपनी फिल्मों में प्ले किए थे, उन किरदारों की इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, उनकी स्ट्रगल्स और एस्पिरेशन से रशियन लोगों ने इतना कनेक्ट किया कि उनको एक अलग तरह की उम्मीद और खुशी मिली उन फिल्मों से, उन किरदारों से। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राज कपूर बिकेम दिस सेंसेशन, दिस आइकॉन इन रशिया। मतलब राज कपूर को बिना वीजा रशिया में एंटर करना अलाउड था। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि राज कपूर जब मॉस्को में एक टैक्सी में बैठे तो वो टैक्सी सड़क पे नहीं हवा में चल रही, क्योंकि लोगों ने खुशी में उस टैक्सी को उठा लिया था। राज कपूर के गाने बिकेम एंथम्स इन रशिया, जो आज भी वहाँ प्ले होते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रणधीर कपूर को डायरेक्शन सीखने के लिए राज कपूर साहब ने डायरेक्टर लेक टंडन के पास भेजा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो रणधीर कपूर जब ये डायरेक्शन सीखने के लिए घर से निकलने लगे तो राज कपूर साहब ने उनको क्या कहा? रणधीर कपूर ने एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पे शेयर किया था, सुनिए।
1: राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना, ये वैल्यू सिस्टम है। राज कपूर जी ने हमको सिखाया कि पैसों की कदर होनी चाहिए। वी वर ब्रॉट अप दैट वे। बस में गए, ट्रेन में गए, पर जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे, मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। कोई भिखमंगा आया तो हंसने लगा कि दादा तुम ऐसी गाड़ी में जाते हैं, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है। घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए हैं। तो बबीता से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से, और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी और लेके मेरे पिताजी के पास गया। बहुत खुश हुए, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया और कमाओ और गाड़ियां लो। पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर है, एक तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेंगे राज कपूर बस में बैठा हुआ है, ये तुम्हें जरूरत है।
0: क्या ही मजा मस्ती ड्रामा चलता होगा कपूर हाउस होल्ड में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Gio, hey Gio, pelan kaos, hey Gio.
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
2: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
1: रामा उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

0: डीडीएलजे फिल्म में शाहरुख खान का किरदार राज जो वो तुनतुना बजाता है, अब तो हम सब जानते हैं कि उसको मैंडोलिन बोलते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जब ये फिल्म शूट हो रही थी ना, तो शाहरुख खान ने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: मैंने पूछा था कि यार आदि, व्हाई डिड यू डिसाइड ऑन अ मैंडोलिन? उन्होंने मुझे बताया कि मैंडोलिन उनका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। उसका एक बड़ा ही कमाल का रीजन है कि व्हाई ही लाइक्ड अ मैंडोलिन। आदि हैज ऑलवेज बीन अ मिस्टर राज कपूर फैन, उन्हें बड़े अच्छे लगते थे। उन्होंने मुझे बताया मोस्ट ऑफ द म्यूजिक और लॉट ऑफ द म्यूजिक दैट इज यूज्ड इन मिस्टर राज कपूर्स फिल्म्स was from the mandolin.
0: Well, इस फिल्म में शाहरुख खान का नाम राज कपूर के नाम पर ही था। एंड राज कपूर खुद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, अकॉर्डियन, बैक पाइपर, पियानो, हारमोनियम, तबला एंड मैंडोलिन भी। और उनकी फिल्मों के गानों में जो मेरा फेवरेट है जिसमें मैंडोलिन यूज हुआ है ना, वो ये वाला है जो अब हम सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्च

0: Hello.
1: Hello, Mr. Gotham.
0: कौन बोल रहे हैं
1: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
0: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
1: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
0: सर कुछ गा के सुनाएगा?
1: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
0: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज।
1: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
0: एनाकोंडा में कौन से गाने
1: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज़, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, मन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
0: सर साहब
1: सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
0: सुन ले बात
1: सर,
0: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है ना बंद कर रहा
1: सर बोलिए।
0: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
1: जी सर।
0: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
2: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: राज कपूर का असली नाम या पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो राज उनका मिडिल नेम था और उनके असली नाम पे ही रणबीर कपूर का नाम है। और एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में रणबीर ने ना राज कपूर साहब के साथ जुड़ी अपनी एक बचपन की बहुत ही प्यारी याद शेयर की थी, सुनिए।
1: मिस्टर राज कपूर पास्ड अवे व्हेन आई वाज रियली यंग, आई वाज अराउंड 6 इयर्स ओल्ड। वेल आई रिमेंबर दैट व्हेन वी वर रियली यंग, ऑल ऑफ अस, माय सिस्टर मी, करीना, लोलो, माय अदर कजिन्स फ्रॉम दिल्ली, ही यूज्ड टू कॉल अस टू द रूम, यू नो, एंड ही हैड ऑल दीस टॉफीज, यू नो, व्हिच ही यूज्ड टू बाय व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल, एंड ही यूज्ड टू हाइड इट इन हिज रूम। सो ही यूज्ड टू लाइक टेक ऑल सलाम्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, मेक अस डू सलाम, give him a kiss, do a little dance for him, and then he used to give us one toffee. And that getting that toffee was a very big deal. You know, I still have remember that taste.
0: आपको पता है जब जब रणबीर से राज कपूर के ऊपर बायोपिक बनने की बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जब तक किसी बायोपिक को आप ईमानदारी से न बना पाए तब तक नहीं बनाना चाहिए, और अगर ये बायोपिक ईमानदारी से बना दी गई तो शायद कपूर खानदान ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। चलिए बायोपिक न सही, लेकिन उनकी अमेजिंग फिल्में हैं जिसके अमेजिंग गाने हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर की वो साइड जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं अबाउट दी अदर साइड ऑफ राज कपूर। राज कपूर में वो सारे ऐप थे जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं। वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, औरतों के साथ फ्लर्ट करते थे और कई बार लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स, उनके रिलेशनशिप्स की बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे इंटरव्यूज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज में है। जैसे ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि जब राज कपूर वैजयंती जी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे तब उनकी मॉम यानी कि राज कपूर की वाइफ उन्हें यानी कि ऋषि कपूर को लेकर कहीं और रहने चली गई थी। इस रिलेशनशिप को वैजयंती माला ने कम्प्लीटली डिनाई किया और ये कहा कि ये संगम फिल्म को प्रमोट करने के लिए आरके फिल्म्स की पीआर टीम का स्टंट था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जिन भी रिश्तों में राज कपूर इन्वॉल्व हुए ये नरगिस जी के साथ ब्रेकअप के बाद के रीबाउंड रिलेशनशिप्स थे। वो मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं कि लिपटा है मेरे दिल से किसी राज की सूरत, वो शख्स के जिसको मेरा होना ही नहीं है। अजब रवायत है मोहब्बत की, उसे पाना भी नहीं है, उसे खोना भी नहीं है। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi. Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: राम तेरी गंगा मैली फिल्म का म्यूजिक कैसे बना था?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पर राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने ये बात शेयर की थी, सुनिए।
2: एक बार मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी पे, वहाँ रविंद्र जैन जी वो गाना गा रहे थे, एक राधा एक मीरा, सुना वाह वाह वाह वाह। बोले किस तस्वीर का ये गाना है? बोले ये मेरा प्राइवेट गाना है। बोले ये गाना मेरा हो गया। वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, राज कपूर बोल रही है मुझे दे दो। अगले दिन ऐसा करो डब्बू, घर में बोल देना कि शाम को 5-7 लोग खाना खाएंगे तुम्हारे साथ और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे किसी को मिलना है और वो इस शहर में मिल सकते हैं। बोले ठीक है। मयूरी क्या हो रहा है अपने घर में? एक तबला आया है, सितार आई है, सारंगी आई है, पापा आ रहे हैं ना, आने दो, हुआ है साथ में रविंद्र जैन भी आ रहे थे।
3: मुझे ये दिन याद है।
2: तो मैंने नमला चादर लगाओ, इधर तकिए वकिए लगाओ एंड सब बैठे, और दादू मेरा गाना बच्चों को सुना दो। तो वो गाना फिर से शुरू हो गया। तो गाना उनने फिर गाया, एक राधा एक मीरा। तो मुझसे बोले तेरे पास चेकबुक है, जो 25,000 का चेक बना के ले आ रविंद्र जैन के।
1: एंड दैट इज हाउ रविंद्र जैन को साइन किया गया था इस फिल्म के आइकॉनिक म्यूजिक के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू.

आपको पता है एक्टर नील नितिन मुकेश एक बार बचपन में राज कपूर की कोई फिल्म देख रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उसमें एक गाना आया तो नील की फैमिली ने उनको बताया कि ये गाना तुम्हारे दादू मुकेश गा रहे हैं, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ये तो राज कपूर गा रहे हैं। हम सबको बचपन में ऐसा लगता था ना कि वो जो एक्टर्स गाना गा रहे हैं वो खुद गा रहे हैं, और कुछ आवाजें एक्टर्स पर ऐसे सूट होती थी जैसे उनके लिए ही बनी हो, मेड इन हेवन। जब मुकेश जी का निधन हुआ था 1976 में तो राज कपूर रो पड़े और बोले कि मैंने अपनी आवाज खो दी। 100 से भी ज्यादा गाने गाए थे मुकेश ने राज कपूर के लिए। पहला गाना जहां 1948 में आग फिल्म के लिए था, वहीं आखिरी गाना 1975 में धर्म करम मूवी के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। अच्छा, ये सारे गाने जो मुकेश जी ने राज कपूर साहब के लिए गाए, उनमें से सबसे प्यारा पता है कौन सा है? अनाड़ी फिल्म का ये वाला। सुनिए मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
4: हेलो
5: हेलो, आप होल्ड कर रहे हैं, एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
4: हाँ जी बोलो।
5: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
4: हाँ जी देते।
5: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
4: कहाँ भिजवाना है
5: मैं आपको
4: बता दो।
5: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
4: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
5: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
4: किसको जी?
5: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
4: क्या गिर गया?
5: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
4: भाई साहब क्या उठवाना है?
5: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
4: सामान
5: उठवा। तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
4: उठवाना है
5: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
6: हेलो
4: हेलो
6: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
4: कहाँ से बोल रहे
6: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only

0: याद कर रहे हैं हम उनको और बात कर रहे हैं अबाउट दी अदर साइड ऑफ राज कपूर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज कपूर साहब को गुस्सा बहुत आता था, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फिल्म मेकर थे वो, खास करके जिन फिल्मों में उनके बच्चे काम कर रहे होते थे। एक बार एक इंटरव्यू में सुनिए ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म बॉबी के पहले सॉन्ग शूट के बारे में क्या शेयर किया था।
1: मेरी जिंदगी का पहला गाना था, मैं शायर तो नहीं, so I was very excited. I got on the sets, I saw my father there, and that little insecurity crept into me. Where is the dance director? My father has to call him Saab. I said, Saab, वो choreographer, dance director नहीं है? He said, choreographer, dance director की क्या जरूरत है? गाना कैसे गाऊंगा, कौन करेगा? खड़े रहो उधर। I said, मैं कैसे कर सकता हूँ? I've never done it. So do it for the first time, करो। I was looking around. He said, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई choreographer या dance director बुलाऊंगा, तुम नए हो, वो जो करेगा तुम उसकी नकल करोगे, और जो नकल होगी उस आदमी ने शशि कपूर, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी सबको वही करवाया होगा, और जब तुम करोगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो शशि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। तो मेक योर ओन आइडेंटिटी इन योर लाइफ, गो स्टैंड देयर, सिंग द सॉन्ग योरसेल्फ, देन ओनली यू विल लर्न।
0: ओ भाई भाई भाई, सुन के ही मुझे तो गूज़बम्स आ गए, डर लग गया एकदम से। बट दैट इज हाउ ही वॉज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं द अदर साइड ऑफ राज कपूर साहब। और ये बात तो जग जाहिर है कि राज कपूर साहब और नरगिस जी बहुत लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप में थे। 21 साल की उम्र में राज कपूर नरगिस जी से तब मिले थे जब वो 16 साल की थी और उनकी इस मुलाकात को उन्होंने बॉबी फिल्म के सीन में रिक्रिएट किया था जब डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात होती है। उसी दौरान लेट 40s में दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और यहीं से उनकी दोस्ती, उनके बीच अट्रैक्शन की शुरुआत हुई। राज कपूर शादीशुदा थे तो भी नरगिस जी उनसे शादी करना चाहती थी। वेल, हमारे देश में मैरिज एक्ट 1955 में आया, उससे पहले एक मर्द का एक से ज्यादा शादियां करना बहुत ही नॉर्मल माना जाता था। राज कपूर नरगिस जी से कहते रहे कि वो उनसे शादी करेंगे लेकिन इवेंचुअली उन्होंने मना कर दिया और इस तरह से दिल टूटने के बाद नरगिस जी राज कपूर की जिंदगी से और आरके स्टूडियोज की फिल्मों से हमेशा के लिए चली गईं। इसके 2 साल बाद जब उन्होंने सुनील दत्त से शादी की तो ये बात राज कपूर बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी नाजुक सी मेल ईगो काफी हर्ट हो गई। वो शराब के नशे में धुत रहते थे, बदहवासी में सिगरेट से अपना हाथ जला लेते थे, किसी के भी कंधे पे सर रख कर रोना शुरू कर देते थे। काफी इंटरव्यूज में उन्होंने नरगिस जी का नाम डायरेक्टली ना लेते हुए उन्हें काफी बुरा भला कहा। अक्सर वो प्यार बहुत टॉक्सिक हो जाता है जिसको मंजिल नहीं मिलती है। ऐसा ही था नरगिस जी और राज कपूर साहब का प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मेरा नाम जोकर, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आज तो इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, मेनली इसकी लेंथ की वजह से। 4 घंटे से ऊपर की थी ये फिल्म। एक बार एक कॉमेडी टीवी शो में सुनिए राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म के बारे में क्या शेयर किया था।
1: बहुत प्यार से, लगन से बनाई थी फिल्म। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जोकर वाज डेफिनेटली राज कपूर फेवरेट पिक्चर। जब पिक्चर नहीं चली, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। हर पिक्चर की भी अपनी अपनी, जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी किस्मत होती है, बट जो बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो माँ बाप के फेवरेट हो जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है ये बोल के कि टुडे मेरा नाम जोकर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट पॉइंट। मेरा नाम जोकर इज अ बिग हिट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। जो तब नहीं चली थी, जब लोगों को समझ नहीं आई, आज बहुत समझ आती है और बहुत अच्छी लगती है उनको।
0: उस टाइम लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि बहुत बोर्ड थी उस टाइम के हिसाब से, मे बी वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। वेल, ये जो कॉमेडी को ट्रेजेडी के साथ मिला के जो सोशल मैसेजेस देते थे, यही शायद अमेजिंग क्राफ्ट था इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन का, राज कपूर का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

बेटा ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: सही श्रीमान आपका क्या?

0: Hello, Mr. Gotham.
1: Go on, Murray.
0: Sir, may I actually ask sir, about the request करना चाहिए मैं सर आपसे ना आप वो singing winging सिखाते हैं सर तो सर गाने का थोड़ा शौक है मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े different होते हैं
1: कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं।
0: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक कहीं घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में सर नागिन का है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना फिल्म देखी है सर आपने
1: सर कुछ गाने
0: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है
1: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
0: भेज दो वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
1: कौन से गाने
0: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज़ वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए एक पेशकश कर रहा हूँ तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बताए बांसुरिया
1: क्या
0: सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा
1: सुन ले बात मेरी बात सुन पहले बात
0: हाँ सर
1: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
0: है सर बोलिए
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात है
0: जी सर
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
2: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया मुर्गा बन गया आपका

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Radio Mitri New York. It's hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता होगा।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये। प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ। प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये। सत्त्वोत्तरै सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन। सौम्योपयन्तृ मुनिनाम मदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये। सत्त्वोत्तरै सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन। सौम्योपयन्तृ मुनिनाम मदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बच्चों के टेंशन या एंजाइटी के टाइम पर पेरेंट्स उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये सिस्टर आपने जो कहा ये तो बच्चों के हिसाब से होगा कि बच्चों को क्या करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स पे भी बहुत प्रेशर आ जाता है कि मेरा बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा स्कूल जाना, उसको बहुत तकलीफें हो रही हैं, और ज़्यादातर बच्चे इस एज में आके बहुत कुछ शेयर नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा चुप चुप रहता है, अकेले में है एक्सेट्रा। सपोजिंग ये प्रॉब्लम एक पेरेंट के लिए भी सॉल्व करना हो कि भाई बच्चा नहीं जाना चाहता, तो आपने कहा बच्चे का अगर उद्देश्य क्लियर है तो धीरे धीरे वो मार्ग पे सफल हो जाएगा। लेकिन जब एक पेरेंट देख रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो पेरेंट को उस समय क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए?
4: पेरेंट को जरूर बच्चे से बात करनी चाहिए, पर कई बार आप देखें पेरेंट्स बातचीत करते हैं पर उसका बहुत रिजल्ट क्यों नहीं निकलता, क्योंकि बच्चा एक स्ट्रगल से गुजर रहा है और उसके स्ट्रगल का इम्पैक्ट पेरेंट पर पड़ जाता है।
3: हाँ,
4: तो पेरेंट भी अंदर से काफी दर्द में होता है
3: जी।
4: फिर वो जो कॉन्वर्सेशन होती है वो भी थोड़ी सी दर्द में होती है। सी व्हाट हैपेंस, अगर कॉन्वर्सेशन बहुत पॉजिटिव भी है लेकिन मदर पेरेंट से एक वाइब्रेशन रेडिएट होता है।
3: हाँ, चिंता की,
4: चिंता का है, फियर का है, वरी का है, और हम कह भी कह देते हैं कि मुझे इसलिए चिंता होती है क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है।
3: जी बिल्कुल,
4: लेकिन प्यार का वाइब्रेशन बहुत अलग है।
3: हाँ, तो प्यार की वाइब्रेशन नहीं जा रही है इस वक्त, सिर्फ चिंता और भय का जा रहा है।
4: केयर एक अलग चीज है, वरी एक अलग चीज है। यू केयर फॉर योर चाइल्ड बट यू वरिंग फॉर योर चाइल्ड,
3: राइट?
4: सो वरिंग इज दैट इवन व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू योर चाइल्ड, आप उसके बारे में सोच रहे हैं
3: जी,
4: और आप जो सोच रहे हैं वो आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है।
3: हाँ,
4: मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसके भविष्य का क्या होगा, वो बहुत दर्द में रहता है। दिस इज अ काइंड ऑफ फियर वरी दैट यू आर गोइंग थ्रू। नाउ व्हेन यू सिट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन यू आर रेडिएटिंग दैट पेन टू द चाइल्ड। इसलिए कई बार बच्चे बात नहीं करना चाहते, वो कहते गिव मी माई स्पेस, वो अकेले बेटर फील करते हैं।
3: हाँ,
4: वो आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपसे बात करके उनका दर्द कम होने की जगह
3: बढ़ जाता है।
4: बट उनका दर्द कोई और कम भी नहीं कर सकता, मतलब फ्रेंड्स वो नहीं कर सकते जो पेरेंट्स कर सकते हैं, जो इमोशनल सपोर्ट उनको चाहिए।
3: हाँ,
4: जो उनको सिर्फ सपोर्ट नहीं, पावर चाहिए।
3: हाँ,
4: उस समय अपने चैलेंज को डील करने के लिए। सो पेरेंट्स विल हैव टू बी अ लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम द पेन ऑफ द चाइल्ड,
3: तभी वो उनको हेल्प कर पाएंगे। नॉट फ्रॉम द चाइल्ड, हाँ बहुत जरूरी है। हाँ,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 101.3।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि हेलो विशाल और सिस्टर श्रेया, मेरा क्वेश्चन है, मैं अपने काम का स्ट्रेस घर ले आती हूँ, फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इस हैबिट को कैसे बदलूं? आई थिंक ये बहुत लोगों का सवाल है सिस्टर।
3: काम का स्ट्रेस तो घर पर आना ही है, क्योंकि स्ट्रेस को ये थोड़ा ना पता चलता है कि अभी ऑफिस से घर आ गए, वो तो एक संस्कार बन गए। काम को एंजॉय करना शुरू करें। अगर आपको ऐसा लगता नहीं, काम में तो स्ट्रेस जायज है लेकिन घर में खुश रहना है, ये नहीं हो सकता है।
2: सही बात है।
3: स्ट्रेस क्या फीलिंग है? एक पेन की फीलिंग है, डिस्कम्फर्ट है, प्रेशर है। तो आप अगर अपने काम को एंजॉय करेंगे तो आप घर में भी उसी खुशी को लेकर के आएंगे। पर दो इमोशंस अलग नहीं हो सकते कि ऑफिस में तो हम स्ट्रेस्ड आउट रहे, डिप्रेस्ड रहे, एंग्री रहे, और घर आए तो एकदम खुश हो जाए, वो नहीं पॉसिबल।
2: एक तो खुश रहो, अपना काम खुशी से करो, दूसरा है अगर कोई कारण से स्ट्रेस है तो क्या कर सकते हैं?
3: स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ फीलिंग। जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हम कई बार कहते हैं कि स्ट्रेस एक पेन की तरह होता है, एक मैसेंजर है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप कहेंगे काम का स्ट्रेस है, कोई कहेगा ट्रैफिक का स्ट्रेस है, कोई कहेगा हेल्थ का स्ट्रेस है, कोई कहेगा रिश्ते का स्ट्रेस है। यही तो ना, बाहर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, उस चीज का प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया। एरिया क्या है? इनर पावर टू कोप।
2: अगर वो बढ़ा देते हैं,
3: जितनी इनर पावर को बढ़ाते जाएंगे, जितना इनर रेजिलियंस को बढ़ाते जाएंगे, उतना एक्सटर्नल फैक्टर का इम्पैक्ट आपके ऊपर कम
2: पड़ेगा।
3: एक्सटर्नल फैक्टर को एकदम खत्म कर देना
2: पॉसिबल नहीं, आपके हाथ में नहीं।
3: हम में से किसी के हाथ में भी नहीं। हम कहें कल से हम मुंबई में उठे, ट्रैफिक ही नहीं हो, सड़कें बिल्कुल खाली हो, मेरा बॉस गुस्सा ही नहीं करे, और डेडलाइन टारगेट तो हो ही नहीं स्कूल में, इट्स नॉट पॉसिबल।
2: तो इनर पावर बढ़ाएं।
3: हम वैसे कोशिश प्रेशर हटाने की करते हैं, पर कहां तक हटाएंगे? आज आप जैसे स्कूल में, हम पहले भी बात कर रहे थे, हमने एग्जाम हटा दिए, कहां तक हटाएंगे? आप पढ़ाई तो नहीं छोड़ देंगे ना।
2: तो इनर पावर को बढ़ाएं। आई थिंक कई बार अगर आपने स्ट्रेस्ड को अंग्रेजी में लिखा है तो उसको रिवर्स जब पढ़ते हैं तो डिजर्ट स्पेल करता है। तो आप इनर पावर को डिजर्ट्स की तरह खाएं और स्ट्रेस को दूर भगाएं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: पेरेंट्स अपने बच्चों के पेन से कैसे डिटैच हो सकते हैं?
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: Parents don't have to be detached from the child, but from the pain of the child.
5: And how will you be detached from the pain of the child? आपको पता है कि आपके भी जीवन में बहुत बातें आई थी।
4: बिल्कुल, आपने हैंडल कर ली।
5: हाँ, ये एक सी आपका बच्चा नहीं है, इट्स अ सोल ऑन अ जर्नी।
4: बिल्कुल, आपसे अलग है।
5: हाँ, उसकी यात्रा में भी कुछ बातें तो आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ स्ट्रगल्स आएंगे, कुछ सैक्रिफाइसेस आएंगे। आपको उसको एम्पावर करना है,
4: बस।
5: दैट इज द रोल ऑफ अ पेरेंट। आप ट्रस्टी हैं, भगवान ने आपको निमित्त बनाया है उनको एम्पावर करने के लिए। अपने को याद दिलाएं, पहले अपने को एम्पावर करें,
4: इट इज ओके।
5: जर्नी है, जर्नी में होता है, कुछ ना कुछ होता है। नाउ व्हेन यू आर एम्पावर्ड, अब आप उससे बात करेंगे ना, दर्द में नहीं लेकिन कंप्लीट स्टेबिलिटी में, तो उसको सहारा लगता है।
4: हाँ बिल्कुल, और फिर उस समय वो ओपन कम्युनिकेशन भी करेगा, आप उनको गाइड भी कर पाएंगे चॉइसेस की तरफ और फिर उसके उद्देश्य की तरफ। तो बहुत सही कहा कि भाई
5: उसको एक पावर मिलती है कि मैं कर सकता हूँ। पता नहीं पेरेंट में ये कितनी बात होती है, जब पेरेंट एक बच्चे को कहता है ना हो जाएगा,
4: तो हो जाता है।
5: हाँ, उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है। इट इज दैट बॉन्ड कि आप अपने बच्चे को सिर्फ एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को पावर दे रहे हैं।
4: बहुत खूबसूरत बात,
5: काउंसलर नहीं कर सकता है।
4: बहुत बहुत खूबसूरत बात, और सबसे बढ़िया बात आपने कही कि उसके पेन से डिटैच होना, बच्चे से डिटैच नहीं होना, बहुत खूबसूरत बात।
5: दुनिया का हर व्यक्ति राय दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है, लेकिन पेरेंट्स इसके साथ साथ
4: पावर
5: देते हैं, क्योंकि उनका हर संकल्प, उनका हर वाइब्रेशन बच्चे तक पहुंचता है।
4: बहुत खूबसूरत बात।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सुदीप पुणे से लिखते हैं कि मैं एक वेंडर हूं और मेरे एक क्लाइंट बहुत रूड बिहेव करते हैं, ऐसे काम करवाना चाहते हैं जो हमारे स्कोप ऑफ वर्क में ही नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं, और जब लोग आपकी ऐसे में क्या करें जब लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाएं या आपको इंसल्ट करें? अपनी गुडनेस को कैसे प्रोटेक्ट करें बिना नेगेटिव हुए, क्योंकि क्लाइंट है तो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते हैं।
3: ना हमें ज्यादा उनको कुछ बोलना है और ना हमें उनके बारे में ज्यादा सोचना है
2: जी।
3: हमें जब हम गुड होते हैं या हम किसी एक क्वालिटी के साथ काम करते हैं तो वो उनके लिए नहीं कर रहे होते
2: जी, अपने लिए कर रहे होते।
3: हाँ, क्योंकि वो करने में हमें सुकून मिल रहा होता है।
2: बहुत बढ़िया बात कही आपने।
3: अगर हम किसी को ट्रस्ट करते हैं, हम किसी से डिग्निटी से बात करते हैं, हम किसी के साथ काइंड है, हम किसी का गलत नहीं करते, तो हम उन पर थोड़ी ना फेवर कर रहे हैं।
2: हमारा संस्कार है वो।
3: जो अच्छाई है वो हमने अपने जीवन के लिए चुनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अच्छाई से मेरा अच्छा भाग्य बनता है।
2: बिल्कुल।
3: तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। जब कोई सही तरीके से बात नहीं करता है तो वो उसका कर्म है, वो उसके संस्कार है। ये भी समझना चाहिए वो दर्द में है, दुखी। हम बार बार ये चीज कहते हैं कि अगर कोई सही तरीके से बिहेव नहीं करता है तो वो बहुत शक्तिशाली नहीं है।
2: वो तो ठीक है, लेकिन सिस्टर वो कह रहे हैं कि हमारा स्कोप, देखो पैसे मुझे 5 मिलने हैं लेकिन आप काम मुझसे 10 का करवा रहे हो, पेमेंट भी उसके नहीं दे रहे हो, और मुझसे ऐसा काम करवा रहे हो जो मेरे स्कोप ऑफ वर्क में भी नहीं है। ये करना ही नहीं मुझे।
3: रह सकते हैं ना।
2: हाँ, लेकिन फर्म रहेंगे तो बोले ठीक है दूसरा वेंडर ले आते हैं,
3: तो फिर क्या कर सकते हैं?
2: सही बात है।
3: आप खुद बताएं, ऑप्शंस हर चीज में देखने होते हैं। अगर वो आपका स्कोप ऑफ वर्क है ही नहीं, जो चीज मुझे आती नहीं, आप 10 बार भी मुझे कहें करने के लिए, तो मुझे कहीं तो फर्म होना ही पड़ेगा ना कि दिस इज समथिंग दैट आई कांट डू और आई एम नॉट कंफर्टेबल, ये मुझे आता ही नहीं है। तो हम रूड नहीं होते। उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी के अवगुण है। अभी ये भी एक ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे के अवगुण को कॉपी कर रहे हैं। ईंट का जवाब
2: पत्थर से देंगे
3: क्यों? वो रूड है। 10 बार भी रूड हो, 20 बार भी रूड हो, आप अपनी बात कहें, 10 बार कहें, 20 बार कहें, असर्टिव होकर के कहें, फर्म रहें, लेकिन आपको उनके अवगुण को उठाने की
2: सही बात। वो रूड बने तो आप रूड बनिए और आप बोलिए ठीक है भाई हमसे नहीं हो पाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

Con bola, mucho enajo paega. Con bola, con bola.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बच्चों को एडवाइस देने में और उन्हें कंट्रोल करने में क्या डिफरेंस है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये आपने बात बहुत खूबसूरत कही कि बच्चों को एडवाइस देने वाले, राय देने वाले, ओपिनियन देने वाले बहुत हैं। इससे मुझे एक दूसरी बात याद आ गई कि मार्क ट्वेन जो है बहुत कमाल के लिखते थे, उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी एडवाइस टू यूथ, और जिस तरह से वो लिखा गया वो है कि भाई उन्हें किसी ने कहा था कि आप प्लीज़ किसी स्कूल या कॉलेज में जाके बच्चों को एडवाइस दीजिए, और वो बहुत सार्केस्टिक तरीके में और बहुत ह्यूमरस तरीके में एडवाइस देते हैं। और उसमें आई थिंक पहली जो एडवाइस थी वो ये थी कि बच्चों को कहते हैं कि भाई मेरी एडवाइस है कि पेरेंट्स की बात हमेशा सुननी चाहिए, जब वो तुम्हारे सामने हो, जब वो नहीं होते तब तुम कुछ भी कर सकते हो। उसमें बात भी कहते हैं कि इसलिए करना आपको जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो तुमसे करवाएंगे। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कभी कभी बच्चे के मन में बैठ भी जाता है कि यार पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाना चाहते हैं अगर मैं नहीं भी करना चाहता हूँ। तो आपने जो बात कही ना कि आपको बच्चे के पेन से डिटैच होना है, बच्चे से डिटैच नहीं होना, दूसरा भी सही है कि आप इतना उसको एडवाइस और गाइड ना करने लग जाए कि वो आपके डर में काम करे बजाय इसके कि आपके स्नेह में काम करे।
4: एडवाइस देना अलग चीज है, कंट्रोल करना अलग चीज है। एक है आप बच्चे से बात करके उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और फिर डिटैच होते हैं, ही विल चूज हिज ओन जो रास्ता है। एक है कंट्रोल।
3: जी,
4: कंट्रोल आप कर सकते हैं बच्चे को, बच्चा फियर से काम कर भी देगा बट टिल सर्टेन एज।
3: बिल्कुल,
4: अगर वो छोटा है, डिपेंडेंट है तो वो कर देगा।
3: हाँ।
4: लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो रिबेलियस हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है।
3: हाँ।
4: वो बिल्कुल वो करेगा जो आप कह रहे हैं, उसका उल्टा करेगा।
3: हाँ।
4: तो वो कंट्रोल लॉन्ग टाइम नहीं वर्क करता है। कंट्रोल इनफैक्ट रिश्ते को बिल्कुल तोड़ देता है। क्योंकि आप सफोकेटेड फील करते हैं, आप प्रेशर्ड फील करते हैं, कंट्रोल्ड फील करते हैं, वो वर्क नहीं करता।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है श्रेया घोष से, बैंडल यानी कि बंगाल में है ये। वो लिखती हैं कि सिस्टर क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाता है, फालतू बातें सोचने लगती हूँ, जैसे स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने स्कूल में मेरे साथ कैसा बिहेव किया वगैरह वगैरह।
2: फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगेन एक स्ट्रॉन्ग माइंड की निशानी है। जब आपका मन शक्तिशाली है, शक्तिशाली मन किसको कहते हैं, मुझे जो सोचना है, जितना समय सोचना है, अपने मन को जहाँ लगाना है मैं लगा सकता हूँ।
1: जी,
2: मेरा मन मेरे कंट्रोल से चलता है।
1: जी,
2: कमजोर मन का क्या हो गया, वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
1: हाँ।
2: कह रहे हैं मेरा मन।
1: हाँ।
2: मेरा मन कहते, तेरा मन तो नहीं कहते ना, मेरा मन कहते हैं। तो मैं मन का मालिक होना चाहिए।
1: हाँ।
2: लेकिन मन मेरा मालिक बन गया।
1: सही बात है।
2: अब उसको जहाँ जाना है, जो सोचना है, वो कर रहा है।
1: वो कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहा है।
2: कहीं भी जा रहा है। एंड यू लूजिंग टाइम, यू लूजिंग फोकस, यू लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाए वो देखते हैं। दो तीन चीजें। एक, आपका मन क्योटिक रहेगा अगर आप बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं।
1: जी,
2: वो नॉइजी हो जाएगा, वो नहीं कंसंट्रेट कर सकता। ये चीज बहुत समझने की, हमें लगता है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के उस मन को प्रोसेस नहीं कर पाता।
1: सही बात है।
2: वो भी एक मशीन की तरह है, उसको भी उतनी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे जैसे डाइजेशन है, पेट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो,
1: सही बात है, लेकिन अगर ज्यादा खाया तो फिर वो तो इंडिजेशन तो होगा ही।
2: हाँ, मतलब जैसे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, पानी है,
1: सही बात है,
2: बहुत अच्छा है,
1: लेकिन ज्यादा पीने पे बीमारी होगी,
2: ज्यादा पीने पर बीमारी होगी। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्मेशन, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, गाने हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज है, इतना इतना इतना अंदर ले रहे हैं, द माइंड डजंट गेट इनफ टाइम टू प्रोसेस,
1: राइट,
2: दैट्स व्हेन थोड़ी देर के बाद वो उस प्रोसेस करने में चला जाता है।
1: सही बात है।
2: जो आपने सुना है वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में चला जाता है, दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है, थोड़ा मी टाइम निकालना चाहिए टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके फ्रेंड्स ने कहा या किसी ने कुछ कहा। कोई चीज अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप अगर उसको एनालाइज करके, उसको वर्क करके, उसको क्लोजर नहीं देते
1: तो चलता रहे,
2: तो वो चलता रहेगा, फिर वो पास्ट बन जाता है। फिर हम कहते हैं ना कि 80% टाइम तो हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। क्यों? आपने उसी दिन उसको लेट को नहीं किया।
1: जी।
2: उसको क्लोजर नहीं दिया, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, अपनी हीलिंग नहीं करी। सम 20 मिनट्स, 10 मिनट्स जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा मी टाइम। दिस इज जस्ट अ बज वर्ड, मी टाइम। है क्या मी टाइम? मी टाइम इज बेसिकली स्पेंडिंग दैट टाइम विद यू एंड हीलिंग योर सेल्फ। कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको आप करें तो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। एंड थर्ड, ट्राई एंड स्टडी इन द मॉर्निंग।
1: हाँ, ये आपने पहले भी कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं।
2: नहीं, बच्चे थके हुए मन से पढ़ रहे हैं।
1: हाँ, सुबह सुबह आपकी एनर्जी भी हाई होती है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत समय होता है।
2: थका हुआ मन कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? थका हुआ मन मना, आप सुबह उठे, समझो आप लेट उठे, फिर 6-8 घंटे तो आजकल बच्चे क्या करेंगे, ये देख लिया, फ्रेंड्स के साथ चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, अब रात को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं।
1: मन थका हुआ है।
2: थका हुआ मन फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है।
1: सही कह रही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल के जनरेशन के पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: और मुझे एक चीज बताइए कि हर घर की कहानी है कि जो माँ बाप होते हैं उनके भी माँ बाप रहे हैं, तो हमेशा ये कहने को या सुनने को जरूर मिलता है कि यार हम तो अपने माँ बाप से ऐसे बात नहीं करते थे, तुम क्यों नहीं सुनते हो हमारी बात। और ये जो आज की जो जनरेशन है जो माँ बाप के हैं, वो कहते हैं कि यार वी आर द लास्ट जनरेशन जिन्होंने अपने माँ बाप की भी बात सुनी और अपने बच्चों की भी बात सुन रहे हैं। तो ऐसे केस में ऐसे माँ बाप को आपकी क्या सलाह है?
4: मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो पहले के जनरेशन जो कई बार कहती है कि हमने तो अपने माँ बाप की सुनी है, कई बार पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो सकते हैं लेकिन जो उनके अंदर का प्यार था वो बच्चों को पहुंचता ही था, इसीलिए वो करते थे। दो चीजें होती हैं, एक है बाहर के बोलने का तरीका और एक होता है दूसरा अंदर आपके क्या इंटेंशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं।
3: बिल्कुल।
4: तब वो एक कल्चर में था, डिसिप्लिन भी था, गुरुकुल जैसा सिस्टम भी था। हाँ। अंदर में बहुत था कि पेरेंट्स ने कहा तो हमें करना है
3: जी।
4: हम उसमें बहुत क्वेश्चन नहीं करते थे, डिबेट नहीं करते थे। हाँ। और हमें प्रेशर्ड भी नहीं फील होता था उस एज में, हमें कंट्रोल्ड भी नहीं फील होता था। हमें लगता था हम अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हाँ। और आज्ञा के पालन करने से हमें दुआएं मिलती हैं
3: जी।
4: और कहते थे कि ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की। सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट दैट दे वर सफोकेटिंग, दे वर फीलिंग सफोकेटेड। नाउ अब ऐसा एक समय आ गया है कि जहाँ पर रिश्ते में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मना कई बार टाइम नहीं है, लव नहीं है, उतना नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि मेरा बच्चा ना मेरे अनुसार होना चाहिए। सी एक बच्चा, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स टू बी लव्ड। डू यू अग्री दिस?
3: आई एग्री।
4: अब वो लव क्या है? एक वाइब्रेशन है। आई एम नॉट सेइंग इसको गलत तरीके से नहीं ले, लेकिन फिर भी कभी कभी जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं या उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, या कई बार आपके अपब्रिंगिंग जो है वो नानी के थ्रू हो रही है, मेड के थ्रू हो रही है, उतना प्यार नहीं कर सकते। वो ड्यूटी से करेंगे,
3: बिल्कुल
4: वो करेंगे, हर चीज करेंगे,
3: रिप्लेस नहीं कर सकते,
4: वो ट्रेंड है, वो परफेक्टली करेंगे, लेकिन शायद वो उस चीज को रिप्लेस तो नहीं कर सकते ना। एक मदर का जो एक अनकंडीशनल, एक निस्वार्थ प्यार है, कभी कभी जब वो नहीं मिलता है तो वो बॉन्ड नहीं बनता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है। हेलो विशाल एंड सिस्टर श्रेया, मैं अभिषेक माध्यमिक शिक्षक हूँ। पिछले 3-4 महीनों से जब सुबह उठ रहा हूँ, एक आलस सा मन में बना रहता है, जिससे मैं ना तो मॉर्निंग वॉक पर जा पा रहा हूँ और ना अपना काम कर पा रहा हूँ। डेली कोशिश कर रहा हूँ इस उपद्रव से लड़ने का, लेकिन यह आलस मुझे इस उहापोह में थका दे रहा है। ब्रह्म कुमारी श्री श्रेया जी से मेरा अनुरोध है कि इस अंतर द्वंद से मैं कैसे मुक्ति पाऊँ।
3: सुबह उठने की जब बात आती है तो कई बार मुझे ऐसा आजकल महसूस होता है कि हम सोते बहुत लेट हैं और सुबह जल्दी उठना चाहते हैं।
2: हाँ, ये बात भी है, और उस पे हम सोचते नहीं कि हम जल्दी क्यों नहीं उठ पा रहे हैं।
3: माना कई बार हमें जल्दी उठने की जगह जल्दी सोने की मेहनत करनी चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा है कि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप उठ ही जाएंगे। किसी के लिए 6 घंटा, किसी के लिए 7 घंटा मैक्सिमम होता है। तो एक चीज ये है कि ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि हम 12-1 बजे सोए और फिर 6 बजे उठ जाएं, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो जल्दी सोने की कोशिश करें। सेकेंडली ये हो सकता है कि कभी कभी हमारा जब उठने का मन नहीं करता है, तो वो ये भी हो सकता है कि हमारे जीवन में जब कोई चैलेंज चल रहा होता है, कोई स्ट्रगल चल रहा होता है, सो वी डोंट वांट टू फेस इट, तो वो नींद प्यारी लगती है, वो सोए रहना प्यारा लगता है। पर उसमें अपने मन को समझाना कि जीवन उतार चढ़ाव है, ये जो चैलेंज है, वैसे भी आप देखें हमेशा जब कोई चैलेंज होता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, लगता तूफान है, होता तोहफा है।
2: अरे वाह, क्या बात है।
3: लगता तो तूफान है, लेकिन वही चीज हमारे अंदर की रेजिलियंस है, सहन करने की शक्ति है, संभालने की शक्ति है, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस है, वही चीज तो बढ़ाता है। सो जो भी चीज है उसको फेस करें, उससे भागे नहीं, उससे किनारा नहीं करें। नींद वो चीज है जो किनारा करना, मतलब इसलिए डिप्रेस्ड भी व्यक्ति क्यों होता है, डिप्रेशन वाले व्यक्ति को से भी सुबह नहीं उठा जाता। लेजीनेस कई बार, देखो ये समझना ही पड़ेगा, सिचुएशनल होता है। आप देर से सो रहे हैं इसलिए हैं, आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं इसलिए हैं, आप डिप्रेस तो नहीं है। डिप्रेशन का भी एक लक्षण क्या है, वो लगता लेजीनेस है पर होता डिप्रेस्ड है। यू जस्ट डोंट वांट टू गेट अप, यू जस्ट डोंट वांट टू फेस द लाइफ। तो जो भी है उसको फेस करें और आगे बढ़े, उसमें कुछ ना कुछ कल्याण ही है।
2: क्या बात।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो माय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, जहाँ पर चाय गरम, कॉफी ओवर कॉन्फिडेंट और ट्रैफिक जो है काफी प्रेडिक्टेबल हो चुका है, लेकिन यू मेड द राइट चॉइस. वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त. बातें करने वाले हैं हम म्यूजिक, मिर्ची एंड मस्ती के बारे में. ढेर सारी गॉसिप, गपशप और अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली है अगले कुछ घंटों में, और तुम्हारी लाइफ होने वाली है सुपर मिर्चीदार, सुपर ऑसम. और आज का लाइफ का मंत्रा है नेटफ्लिक्स की तरह, लोगों से पूछो मत आर यू स्टिल वॉचिंग, बस अपने आप को अपग्रेड करते रहो. क्योंकि हम देसी जो है ना, उनकी लाइफ का अनऑफिशियल चैलेंज ही होता है इमोशनल बैगेज को कैरी करना. और इसी बात पर फटाफट से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी फिलहाल कहीं जाने का नहीं, चिपक के बैठने का यहीं पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं नहीं,
3: बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
1: इट्स पजाक,
4: मिर्ची फ्रेश माल।
5: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, वन रिपीट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Welcome to Mirchi Mornings का weather update. Right now the temperature is sitting at 58 degrees Fahrenheit, but because of the wind, it's feeling closer to 55 degrees Fahrenheit. यानी कि weather के कवि कहना चाहते हैं, hoodie weather तो चल रहा है, लेकिन इतना dramatic नहीं कि तुम winter hoodie निकाल लो. Good news ये है कि zero rain is expected in next 24 hours, exactly as it was expected in the last 24 hours. और बारिश हुई नहीं. Mornings stay clear. And tonight also stays clear. यानि कि अम्ब्रेला को आज घर पर छुट्टी मनाने के लिए छोड़ा जा सकता है. आज का रेंज देख लेते हैं. From a fresh 55 degrees Fahrenheit all the way up to 83 degrees Fahrenheit, we are going to fluctuate, and it'll feel like 51 to 86 degrees Fahrenheit, depending on the wind and sunshine. Also, today is a bit warmer than yesterday. कल था 78 degrees maximum temperature, and today we are upgrading to 83 degrees Fahrenheit. यानि कि summer officially हमें नमस्ते कह रही है. वैसे बाहर निकलते टाइम लेयर के प्लेयर बनो, एज आई ऑलवेज से, एंड साथ साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, एंड मिर्चीदार तरीके से एसपीएफ 50 प्लस प्लस प्लस लगाकर जाना बिल्कुल मत भूलना. एंड अभी मिर्ची लगाए रखो अपने साथ में. मैं हूँ प्रिसिला, मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, uska maa se mat uthao, yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा है?
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है।
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो,
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट With मिर्ची, fresh माल,
6: retro magic और dance floor energy के साथ, सुनो चुनरी चुनरी, let's go.

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
2: Hey there, my Mirchi family. This is Priscilla with you. Sun rahe the Mirchi Mornings. And the trailer for Bharat Bhagya Vidhata just dropped with the line, "The headlines remembered the terror, history forgot the heroes." And online, reactions came in fast. A lot of viewers are calling the trailer powerful and saying this one feels built for the big screen. You know, popcorn in one hand, unnecessary film analysis in the other. And the one thing fans seem to agree on, plenty of comments are praising Kangana Ranaut's screen presence, with many saying she owns every frame. Now, whether you are team first day, first show, team wait for reviews, or team I'll watch after somebody shares login details, one thing Bollywood never misses is giving us conversation material. Also, random desi expat ka thought hai, no matter which country we live in. Trailer release hone par, suddenly hum sab ban jate hain cinematographers, screenwriter, डायरेक्टर, एक्टर एंड वॉट नॉट। लेकिन बात तो सही है, हम देसी जो है ना वो जौहरी होते हैं, हीरा ढूंढ कर आखिर निकाल ही लेते हैं। क्विक लव टू आर के ज्वेल्स, जो कहते हैं कि उनके पास है रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस, एंड वहां पर सच में ये हो रहा है। जीरो लेबर चार्जेस है, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस है, गोल्ड और डायमंड की प्योर वैल्यू तुम्हें मिल रही है। तो वहां जाओ, अपनी गोल्ड एंड डायमंड की शॉपिंग करो। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। और अभी मिर्ची पर बने रहो मिर्चीदार बैंगर्स के लिए। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, my birthday squad. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. And if you're celebrating today, first of all, happy birthday to you. Happy birthday to you. आज मेरी तरफ से एक्स्ट्रा चाय और केक अलाउड है तुमको. All right? और आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं करती है. Now the fun part. Let's see who you're sharing your birthday with. सबसे पहले we've got tennis legend Rafael Nadal. And then we have Anderson Cooper. And also there's Jill Biden, Penelope Wilton and James Purefoy. And for music lovers, आज है बर्थडे द लेजेंडरी कर्टिस मेफील्ड का. तो आज के दिन अगर तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे तो ओवर थिंकिंग बंद करो एंड अभी अपने बर्थडे पर अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हुए मुझे भी फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट.
2: आज जोल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500, $4,500 पर ट्रेड के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड में डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है. गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर गोल्ड बार्स 1 ounce, 100 grams, किलो बार्स, पैम सर्टिफाइड गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल एट राज ज्वेल्स. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए हिंदुस्तान से, जो अबाउट 15% सस्ता है अमेरिका में गोल्ड के प्राइस, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के था. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: दैट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieva la burka. Mirci, burka.
2: Hello, Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
2: सर, मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है, फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना, वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाइए.
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? है ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
2: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा.
3: सुन ले बात,
2: मेरी बात
3: सुन, पहले बात सुन.
2: हाँ सर.
3: और जब बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है. सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात? एक
2: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे, यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनेंगे हम कि सितारे क्या कहते हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, आज ब्रेन ब्राउजर में 47 टैब्स खुले हुए हैं। डोंट प्रेशर योरसेल्फ विद इम्पॉसिबल गोल्स। इजी डे, सॉफ्ट लॉन्च एनर्जी। लकी कलर इज टैंजरीन, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी वृषभ राशि, समथिंग शाइनी मे लुक एक्साइटिंग बट रीड द फाइन प्रिंट। देसी रूल अप्लाइज, ट्रस्ट बट वेरीफाई एंड देन आस्क दैट वन आंटी इन योर फैमिली ऑल्सो। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, फ्रेंडली फेसेस आर नाइस बट डोंट कंफ्यूज वाइब्स एंड फैक्ट्स टुडे। इफ समथिंग फील्स रश्ड, पॉज। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 31। कैंसर यानी कर्क राशि, थिंग्स सीम स्मूथ but work emails can surprise faster than relatives asking beta shaadi kab, stay alert। Lucky color is coral pink, lucky number is 8। Leo yani ki sinha rashi, before launching a giant life plan today, ask does this need to happen now? Delayed drama is sometimes premium piece। Lucky color is bronze, lucky number is 17। And last but not the least, Virgo yani kanya rashi, recover, reset and continue। You're not behind, you are just buffering। Lucky color is mint green, lucky number is 42। And there you have your Rashi Zone number 1। Baki bachi 6 rashiyon ko lekar bas ittu se time mein wapas aati hu main। Tab tak tum suno Mirchi Dar Bangers only on Mirchi Mornings, aur mujhe follow karo। Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विथ चारू ओनली ऑन

0: क्या ही हद सेंशियस गाना है ये भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मुझे याद है गाना मैंने शायद टीवी पे ये फिल्म आ रही थी तब देखा सुना था या चित्रहार में देखा सुना था। और ये जो अगला गाना हम सुन रहे हैं ना, ये भी कोई कम सेंशियस नहीं है। लेकिन ये मैंने पता है कब पहली बार सुना था, इसे मैंने एज ए रीमिक्स सुना था। इस रीमिक्स के वीडियो में थी आयशा टाकिया, शायद आपको याद आ जाए वो वीडियो जिसमें उन्होंने दो चोटियां बनाई हुई होती हैं और उस गाने में क्लब दिखाते हैं, लिफ्ट भी दिखाते हैं। अब तो याद आ ही गया। ओरिजिनली ये गाना जवानी दीवानी का, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना, नाना।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: अपने सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो
3: नहीं नहीं,
4: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शाला वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

1985 की फिल्म गुलामी जब बन रही थी तो उसके प्रोड्यूसर को कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली काफी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तब फिल्म के स्टार्स में से जो सबसे पहले सामने आए, जिन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी फीस नहीं लूंगा इस फिल्म के लिए, वो थे बड़े दिल वाले काइंड हार्टेड धर्मेंद्र जी। और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को जब पता चला कि धर्मेंद्र जी ऐसा जेस्चर कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी फीस लेने से मना कर दिया। इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हेमा मालिनी की उनकी खुद की फेवरेट फिल्म्स कौन सी रही हैं? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: वैसे दुल्हन, किनारा, खुशबू, देन सीता गीता, इट्स अ डिफरेंट रोल, लाल पत्थर।
0: वैसे हेमा जी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे एक्सपोज करने वाली फिल्में या ऐसे सेंसुअस रोल्स वो नहीं करती थी, जिसकी वजह उनको ये सब कंफर्टेबल नहीं लगता था और उनकी मम्मा भी ये सब अलाउ नहीं करती थी, जो उनके करियर के काफी डिसीजंस लेती थी। वैसे हेमा जी से एक बार ये भी पूछा गया था कि उनकी मम्मा जब हमेशा उनके साथ फिल्मों के सेट्स पर रहती थी तो उनके सामने क्या रोमांटिक सीन्स करने में वो अनकंफर्टेबल होती थी।
1: हमारे परिवार के कोई भी सदस्य इस किस्म के सीन करने के समय सामने बैठे हों कैमरा के सामने, तो आर्टिस्ट को तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ये माँ हो या भाई हो या कोई भी हमारे घर के सदस्य, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन टू डू योर रोमांटिक सीन विद अ मैन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स।
0: चलिए इसी बात पे गाना सुनते हैं, जिसका पिक्चराइजेशन शायद इतना सेंसुअस नहीं था, लेकिन ये गाना एक अलग ही तरह का सेंसुअस और रोमांटिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: 1983 की फिल्म सदमा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ,
1: और इसका जो क्लासिक गाना है ए जिंदगी गले लगा ले,
0: ये गाना सुरेश वाडकर जी की आवाज में है, गुलजार साहब ने लिखा है, इले राजा का कंपोज किया हुआ। और इले राजा जी जब इसे कंपोज कर रहे थे इस फिल्म में, तो उनके म्यूजिक ग्रुप में कीबोर्ड प्लेयर पता है कौन थे? A.R. रहमान। किसने सोचा था कि उस फिल्म के कंपोजर्स के ग्रुप में जो कीबोर्ड प्लेयर लड़का है वो और इस फिल्म के लिरिसिस्ट गुलजार साहब मिलके कुछ 25 साल बाद एक आइकॉनिक सॉन्ग बनाएंगे जिसे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। स्लमडॉग मिलियनेयर का जय हो भाई, ऐसी है जिंदगी, कभी लात मार देती है कभी गले लगा लेती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है
1: कह

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नसीब फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अपेरेंटली अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की साथ में लास्ट फिल्म थी। ऐसा सुनने में आता था कि अमिताभ बच्चन साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की सेट्स पे देर से आने की आदत से परेशान थे, और यहाँ अपने बच्चन साहब तो एकदम परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाले हैं। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो उनसे नहीं हो पा रहा था बिकॉज शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत लेट आते थे सेट्स पे, तो उन्होंने उनके साथ काम करना फिर बंद कर दिया। एक्चुअली आई थिंक ये 1981 की फिल्म है नसीब, उसके बाद इनकी कोई फिल्म आई भी नहीं साथ में। कोई पहले से बन रही हो, लेट रिलीज हुई हो, वो अलग बात है। आई थिंक पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब,
2: इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो
1: हेलो
2: भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा,
1: क्या मजाक कर रहा है?
2: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
4: हेलो
1: हेलो,
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pirani Jeans with Charu only on

0: भाई लता मंगेशकर जी ने जब मैंने प्यार किया फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए थे तो कैसे किए थे?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: आप कहेंगे स्टूडियो में गा के माइक के सामने किए होंगे।
1: ऑफ कोर्स वैसे किए थे, लेकिन उन्होंने ना उस फिल्म के सारे गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दिए थे, क्योंकि फिर उनको अब्रॉड टूर पे जाना था, कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह पे। और आप सोचिए, ये फिल्म आई थी 1989 में और उस टाइम लता मंगेशकर जी 60 साल की थी। क्या उनका स्टैमिना, उनकी एनर्जी रही होगी। और उसके बाद उन्होंने ट्रैवल भी किया अगले दिन ये सारी रिकॉर्डिंग्स करने के बाद। ऐसे ही होते हैं फिर कर्मठ लोग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: देव आनंद साहब का असली नाम क्या था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक बार एक इंटरव्यू में इस पर खुद उन्होंने क्लैरिटी दी थी, सुनिए।
1: नाम है धर्म देव, मैंने धर्म को उड़ा दिया क्योंकि मुझे लगा कि धर्म बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। देव रखा और देव के साथ आनंद जोड़ दिया, इसलिए आनंद मेरा सरनेम है और इसलिए मैं धर्म देव आनंद से देव आनंद।
0: और अर्ली 40s जब वो लाहौर में ग्रेजुएशन करने के बाद बॉम्बे आ गए थे एक्टर बनने के लिए, उन दिनों को याद करते हुए सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मैं लाहौर गम कॉलेज में था, मैंने बी ऑनर्स किए थे और मैं एमए जाना चाहता था। मेरे पिताजी की उस वक्त माली हालत ठीक नहीं थी तो मैंने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट की टिकट पकड़ी और मैं किसी को बम्बई में नहीं जानता, किसी को नहीं जानता था। मैं बॉम्बे सेंट्रल में उतरा, मैं 2 साल का स्ट्रगल किया और 2 साल के स्ट्रगल के बाद जब मुझे ब्रेक मिला हम एक हैं का वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान का आजादी का ना देखा, सारे फेजेस देखे हैं।
0: कई बार मुझे लगता है कुछ पुराने एक्टर्स में एक अलग तरह की संवेदनशीलता इसीलिए होती थी बिकॉज इन्होंने इतने बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

प्रोफेसर फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में शमी कपूर के ऑपोजिट थी एक्ट्रेस कल्पना। इनका पूरा नाम कल्पना मोहन था, एक्चुअली इनका रियल नेम अर्चना मोहन था और ये फ्रीडम फाइटर अवनी मोहन की डॉटर थी। अवनी मोहन एक पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्टेड थे और कल्पना जी बहुत अच्छी कथक डांसर भी थी। और कई बार ऐसा होता था कि राष्ट्रपति भवन में जब बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता था बाहर के देशों से भी, तो जब कोई ऐसा कथक परफॉर्मेंस होता था तो उनको इनवाइट भी किया जाता था। काफी फिल्मों में थी ये, प्यार किए जा फिल्म में थी एंड तीन देवियां फिल्म में वो जो गाना है अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, उस गाने में जो एक्ट्रेस हैं वो कल्पना जी ही तो हैं देवानंद साहब के साथ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

1968 की फिल्म शिकार का सुपरहिट गाना पर्दे में रहने दो। इनफैक्ट इस फिल्म के और कोई गाने याद भी नहीं है, यही गाना इकलौता है जो याद रहता है जो सुपरहिट हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये गाना जब फिल्म के ट्रायल शो में आशा पारेख जी ने देखा ना, तो उन्होंने ऐसी डिमांड की कि इस गाने को फिल्म से हटा दिया जाए। ऐसा सुनने में आता है कि काफी लोगों ने उनके ऐसे कान भर दिए थे कि ये गाना अश्लील है। इनफैक्ट ये भी सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाने से मना कर दिया था क्योंकि उनको भी ये गाना अश्लील लगा था। बताइए कितने सीधे लोग थे उस टाइम के, ऐसे ऐसे गाने उनको अश्लील लगते थे, आज तो उनको क्या ही लगता होगा। खैर काफी बातचीत डिस्कशन आर्गुमेंट के बाद फाइनली ये गाना फिल्म में रखा गया, जिससे आशा पारेख जी थोड़ी तब नाराज भी हो गई थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, गाना सुपरहिट हो गया, इस गाने के लिए आशा भोसले जी को उस साल बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, तब सारी नाराजगी दूर हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आसर है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूं ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूं जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर, कुछ गाके सुनाएगी।
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात,
4: मेरी बात
3: सुन, पहले बात सुन।
4: हाँ सर,
3: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: सर, बोलिए।
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: प्रेम चोपड़ा साहब हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए और जब वो कॉलेज पहुंचे तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या मिली? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो फेस करनी पड़ी वो थी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे फटर फटर अंग्रेजी बोले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। सुनिए इस सब से प्रेम चोपड़ा साहब को क्या रियलाइज हुआ, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
1: तुमको देख के मैं बड़ा ताजुब करता था, यार कितने कॉन्फिडेंस है इनमें और हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो मैं चाहता था उनकी तरह बनूं। तो फिर मैंने ड्रामा में कोशिश की काम करने की, तो मुझे मिला एक ड्रामा। दूसरी तीसरी दफा जब इंग्लिश में प्ले मिला तो मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक का रोल मुझे दिया गया, जो सेंट्रल रोल था, वो बड़ा लोगों को पसंद आया। तो मैंने आके अपने वालिद को, वालिद साहब को कहा कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ ट्राई। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ये बड़ी इनसिक्योर प्रोफेशन है, तुम भी अब जैसे IAS वगैरह कुछ करो या कुछ अकाउंट्स ऑफिसर बन जाओ, उसमें यही करना चाहिए रेगुलर ऑफिसर। तो मैंने कही कोशिश तो मैंने ज़रूर करूँगा। अरे कहते हैं भाई ये बड़ा गड़बड़ है प्रोफेशन, क्या करोगे तुम? तो और मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकूंगा वहाँ, ये सोच सोचना, आई हैव लार्ज फैमिली एंड आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मैंने कहा नहीं मैं जाके कोशिश करता हूँ। एक दो महीने का खर्चा लेके मैं चला गया।
0: चले तो गए, लेकिन बॉम्बे पहुँच के उनका सफर इतना आसान नहीं था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कई लोगों के आइडल गुलजार साहब के आइडल रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन टैगोर जी का लिटरेचर गुलजार साहब की लाइफ में कैसे आया, लेकिन उससे पहले किस तरह की किताबें वो पढ़ते थे, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में गुलजार साहब ने क्या शेयर किया था।
1: टू स्टार्ट विद बड़ी जासूसी नॉवल पढ़ा, थ्रिलर्स, तलिस्मी, छुराव, बहराम, डाकू। वो एक लाइब्रेरी थी छोटी सी, पार्टीशन हुआ था, खोखे बना लिए थे रिफ्यूजीज ने ले आके। अखबार भी बेचते थे, किताबें भी देते थे, किराए पर भी देते थे, और हफ्ते में चार आना और किताबें जितनी चाहो पढ़ लो। यही उनका अंदाजा था, भाई एक किताब पढ़ लेगा, दो पढ़ लेगा और क्या। और मैं अब जासूसी नॉवेल का तो ये चस्का होता है कि जब तक क्लाइमेक्स ना मालूम आप छोड़ते नहीं, और मैं रात भर में उसको खत्म कर लेता था, अगले दिन फिर पहुंच जाता था। तो तंग आ गया वो आदमी मुझसे, घाटे वाली बात हो गई ना। तो उसने यही कहा कि चारण में कितनी किताबें दूंगा भाई मैं तुम्हें, तो नहीं। और ये ऊपर के शेल्फ से उसने एक किताब निकाली और ये ले जाओ, और नहीं है किताबें। That man didn't know कि उस एक वक्त में जब वो किताब निकाल रहा था वो मेरी जिंदगी का रास्ता बदल रहा है। वो किताब उसने दी थी, उसका नाम था गार्डनर बाय टैगोर, नज्मों का ट्रांसलेशन था, पहली नज्म थी मालिक, बस वो किताब लग गई। That changed my total pattern of reading and picking up books and literature जिसे कह सकते हैं आप। That became my passion.
0: Celebrating गुलजार साहब पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: नफरत करने

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

ये पत्थर और मोम के जिक्र से बशीर बद्र साहब की ये गजल याद आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीने, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: भाई औरतों को जनरलाइज करने में और उनको अलग अलग टैग्स देने में लोगों को बड़े मजे आते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। और कुछ टाइम पहले सुष्मिता सेन को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने ललित मोदी के साथ अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया था ऑन सोशल मीडिया, जिसके बाद से उनको गोल्ड डिगर वाला टैग दे दिया गया। बट रिसेंटली ललित मोदी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि भाई इट वॉज नॉट सुष्मिता सेन हु वॉज द गोल्ड डिगर इन द रिलेशनशिप, बट शी वॉज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ ललित मोदी हिमसेल्फ। ज्यादातर खर्चे उनके रिलेशनशिप में जो होते थे वो सुष्मिता बेयर करती थी। एंड लाइक सुष्मिता हैड मेंशनड इन वन ऑफ हर कैप्शंस, जब उनको इस चीज को लेकर ट्रोल किया गया था कि भाई आज भी उनको गोल्ड से ज्यादा डायमंड्स पसंद है, दैट टू द वंस दैट शी बाइज फॉर हरसेल्फ। और जो मिलेनियल किड्स हैं एक्चुअली दे नो कि भाई सुष्मिता सेन हैज ऑलवेज स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। इनफैक्ट शी इज अ सेल्फ मेड वुमन जिन्होंने अपनी जिंदगी हमेशा अपने टर्म्स पे जी है। एंड ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट ललित मोदी एज वेल राइट नाउ, क्योंकि आज के डेट में बहुत कम ऐसे मर्द बचे हैं जो एक औरत की इज्जत उछालने से ज्यादा उसको संवारने में विश्वास रखते हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: हेलो उसका वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन?
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको
3: बता दो।
4: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
3: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: हाँ
4: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
7: हिट हिट हिट हिट गाना।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मिर्ची, टॉप ट्रेंडिंग। 5 जून को रिलीज होने वाली अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के मेकर्स ने ऑडियंस के लिए ओपनिंग डे ऑफर रोल आउट किया है, जहां आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है ऑन टिकट्स। देखिए किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा वो मैं नहीं बता सकती आपको, वरना वो अनपेड प्रमोशन हो जाएगा ना। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 50% डिस्काउंट जो है वो वैलिड है ऑन टिकट्स प्राइस्ड अप टू ₹200। इनफैक्ट अगर आप एक नहीं दो टिकट्स लेते हैं तो ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। बाकी ये जो ओपनिंग डे कलेक्शन को बेटर और हेल्दियर बनाने के लिए लोगों ने टिकट्स पर डिस्काउंट लगाना शुरू कर दिया है, इस क्वाइट शाना है ना। ऊंचा लंबा कद फॉरएवर सुना या देखा आपने भाई? आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद दिस सॉन्ग जो रिलीज हुई है फ्रॉम दिस अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल। माइंड यू ये रिक्रिएटेड वर्जन है ऑफ 2007 का सुपरहिट ट्रैक पिक्चराइज्ड ऑन कटरीना एंड अक्षय कुमार, जिसमें इस बार कटरीना की जगह पे बस एक चीज बदल गई है, दैट इज दिशा पाटनी एंड ऑफकोर्स द एंटायर फील ऑफ द सॉन्ग। क्योंकि भाई जो बेंचमार्क वेलकम के उस गाने ने सेट किया था उस तक तो नहीं पहुंच पा रही बात। बाकी अहमद खान डायरेक्टोरियल ये फिल्म 26 जून को रिलीज होगी। बट माई टू सेंट्स ऑन दिस रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ सॉन्ग्स इज कि आज 19 साल पहले के गाने को अगर रिक्रिएट किया जा रहा है तो अगले 20 साल बाद किन गानों को रिक्रिएट किया जाएगा, सोचने वाली बात है। Can't wait for the mystery to unfold. मैं बात कर रही हूँ दृश्यम 3 की, जिसको officially wrap कर दिया गया है। I mean इसकी shooting complete हो गई है। So अजय देवगन and तबू की ये जो much awaited thriller है is now all set to hit the big screens on the 2nd of October. जिसके लिए आई एम श्योर हर वो इंसान जिसने ये फ्रेंचाइजी देखी है would be way too excited for. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, stay tuned, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलूं मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अगर आप पहली बार मेरा शो सुन रहे हैं देन लेट मी एक्सप्लेन। अभी टाइम हो चुका है टू फाइंड मिर्ची फिल्मची थ्रू माय शो, एक नहीं दो, जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू गो टू माय इंस्टाग्राम और वहां मेरे डीएम्स में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेजिए ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है आदि। लेट्स बिगिन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल किसको बोलते हैं?
3: हेमा मालिनी।
0: हेमा मालिनी की फिल्म विद अमिताभ बच्चन जिसमें वो अपने बच्चों के घर रहने जाती हैं।
3: अच्छा, वो क्या, बागबान।
0: वेट, बागबान में अडॉप्टेड बेटा कौन है?
3: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म अदर देन तेरे नाम जिसमें उनका नाम राधे है।
3: वांटेड। वांटेड
0: वांटेड की फीमेल लीड का नाम क्या है?
3: आयशा टाकिया।
0: ग्रेट। आयशा टाकिया की फिल्म जिसमें आत्मा कार चलाती है?
3: टार्जन द वंडर कार।
0: ग्रेट। टार्जन में भूत किसका होता है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन किस फिल्म में अपनी बीवी को उसके लवर से मिलवाने ले जाते हैं?
3: हम दिल दे चुके सनम।
0: ग्रेट। हम दिल दे चुके सनम में सलमान की लवर कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की हिंदी फिल्म जिसमें वो चोर बनी है?
3: वो धूम।
0: कौन सा पार्ट?
3: ये सेकंड जो ऋतिक रोशन के साथ तो था।
0: धूम टू में हर लड़की के साथ शादी कौन इमेजिन कर लेता है?
3: क्या है उसका नाम, चोपड़ा कुछ उपरा है ना, वो हाँ। जो उसके साथ होता है बंदा, व्हाट हिज नेम, अबे अजय, अबे क्या चोपड़ा यार।
0: कोई बात नहीं यार, बट इतना अच्छा जो आपने इस गेम को यहाँ तक पहुँचाया उसके लिए आपको ये टैग देना तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: आदि तो गेस नहीं कर पाए कि आफ्टर ऑल उस एक्टर का नाम क्या है। अगर आपको पता है देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्मची। एक तो मिल चुका है लेकिन दूसरे की खोज है जारी। सो बेसिकली आई वॉज इन कॉन्वर्सेशन विद आदि और उन्होंने इस गेम को एक लेवल तक पहुंचाया, बट उसके बाद मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो आदि जहां से अटके थे उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ हैं पुनीत जी। तो फिर क्या ये गेम आगे कंटिन्यू करूं आपके साथ?
3: यस यस श्योर।
0: ओके, तो धूम 2 में हर लड़की के साथ शादी कौन इमेजिन करता है?
3: उदय चोपड़ा।
0: उदय चोपड़ा की फिल्म जिसमें परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन सिखाया जाता है?
3: मोहब्बतें
0: में वायलिन कौन बजाता है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो टूरिस्ट गाइड बने हैं?
3: हैरी मेट सेजल।
0: जब हैरी मेट सेजल में फीमेल लीड कौन है?
3: अनुष्का शर्मा।
0: अनुष्का शर्मा की फिल्म जिसमें वो कौन वुमन बनी है?
3: बदमाश कंपनी।
0: बहुत बढ़िया। बदमाश कंपनी में मास्टरमाइंड कौन होता है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की फिल्म जिसमें उनका डबल रोल है, जो हम जनरली अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं?
3: कमीने।
0: गुड वन सर, गुड वन। कमीने की फीमेल लीड कौन है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो कैबरे डांसर हैं और दो बेस्ट फ्रेंड्स उनसे प्यार कर बैठते हैं?
3: रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की मूवी है वो।
0: हाँ हाँ।
3: गुंडे।
0: बहुत बढ़िया। गुंडे फिल्म का कौन सा हीरो खिलजी का रोल प्ले कर चुका है?
3: रणवीर सिंह।
0: रणवीर सिंह की उसी फिल्म का नाम क्या है जिसमें उन्होंने खिलजी का रोल प्ले किया है?
3: पद्मावत।
0: पद्मावत में पद्मावती का रोल किसने प्ले किया है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण की फिल्म जिसमें व्हाट हैपेंस इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका, ये वाला डायलॉग है?
3: तमाशा।
0: बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपके साथ ये गेम खेल के। इट वॉज लवली। तो इसी बात पे आपको ये टैग भी दे ही देती हूँ।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: वेल, तमाशा पे हमने एंड किया था। अगर आपको ये गेम वाला तमाशा मेरे शो पे पसंद आता है तो मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके अपना नंबर भेजो ना। बाकी की चीजें आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: Profit Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La pietra la burka.
2: Milchi, burka.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं
4: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाएगा?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह.
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कोंडा में कौन से गाने
4: है? सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. ताने डोले मेरा माने डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया.
3: क्या
4: सर? मत सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा.
3: सुन ले बात
4: सर.
3: और बंद करिए, बिन में जो बजा रहा है ना ये बंद कर रहा
4: सर. बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर.
3: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

0: Sweet के साथ only on मिर्ची it's hot
1: if I got
2: हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
0: only on Radio मिर्ची it's hot।

0: किसी और के लिए स्टैंड लेना छोड़ो, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होता है।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: आई अग्री। बहुत सारे लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ लिया होगा मेरे इस स्टेटमेंट को सुन के कि अरे ऐसे कैसे श्रुति अपने लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं लेगा। लेकिन नहीं बाबू मोशाय, हर इंसान मेरे और आपके जैसे स्ट्रांग नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए भी किसी के सामने आवाज नहीं उठा पाते। बस उसी चीज को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सहारा लूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिनमें कुछ कैरेक्टर्स ने जब अपने लिए वो करेज दिखाया है, अपने लिए स्टैंड लिया है, तो वो मोमेंट आहा मजेदार हो गया है। सो लेट्स रिज्यूम द पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी तमाशा। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई दो, जिसमें राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है, शार्दुल का कैरेक्टर, वो जब अपनी आइडेंटिटी को लेकर लोगों के सामने आता है, बेसिकली अपनी फैमिली के सामने जब वो रिवील करता है कि वो एक गे है, दैट बाबू मोशाय इज द मोमेंट ऑफ करेज इन द मूवी। इनफैक्ट उस चीज के बाद जिस तरीके से शार्दुल की माँ उसको हक करती है इज रियली ओवरवेलमिंग। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें ये भी समझाती है कि आप अपने लिए जब तक आवाज नहीं उठाओगे, तब तक सामने वाला तो बहरा ही बैठा रहेगा। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट द मूवी थप्पड़ ऑन नंबर थ्री, जिसमें तापसी पन्नू के कैरेक्टर अमृता की बात करना चाहूंगी। वेल, ये फिल्म दिखाती है दैट कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एक औरत को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे एक अच्छी पत्नी अच्छी वाइफ बनने के प्रोसेस में बंदी अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस को सैक्रिफाइस कर देती है, और फिर प्रेग्नेंट होने के बावजूद अमृता का डिवोर्स पेपर साइन करना दिखाता है कि वो खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज करती है। एंड दैट माय डियर इज डेफिनेटली अ लाइफ लेसन। खैर, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: इनके हिम्मत की दाद देनी चाहिए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, मेरे और आपके जैसे लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं और हमारे आसपास के बहुत सारे लोग जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं और वो बहुत ही बड़ी चीज होती है, इसलिए मैंने कहा उनके इस हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वैसे हमारे रियल लाइफ से जरा आगे बढ़ के रियल लाइफ की तरफ अगर जाएं तो हिंदी सिनेमा में भी बहुत सारी फिल्मों के थ्रू ऐसे कैरेक्टर्स हमें मिले हैं जिन्होंने उस फिल्म में एक मोमेंट ऑफ करेज जरूर दिखाया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ वैसे ही कैरेक्टर्स और उन मूवीज की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी तमाशा और उसमें वेद का कैरेक्टर। फिर हमने नंबर दो पे बधाई दो की बात की, जहां राजकुमार राव के कैरेक्टर शार्दुल की चर्चा की। देन वी टॉक्ड अबाउट नंबर तीन पे फिल्म थप्पड़, जहां अमृता यानी तापसी पन्नू के कैरेक्टर की बात हुई। और अब बात करते हैं नंबर चार पे फिल्म लापता लेडीज की, जहां जया ने पढ़ाई को चुना। एंड नॉट जस्ट दैट, ऑल द मोमेंट्स इन द फिल्म जहां वो सिस्टरहुड को चुनती है अबव एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटिफुल। वेल ये कैरेक्टर जो है वो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती है, वुमेन बीइंग ईच अदर्स एनिमीज, ये थॉट जो हमेशा से हमारे समाज में पनपते आया है उसको खत्म करने की कोशिश की है इस कैरेक्टर ने। मूविंग ऑन नंबर पांच पे बात करते हैं अबाउट द फिल्म हाईवे, और इसमें आलिया भट्ट के कैरेक्टर वीरा की, जो अपने सारे फियर्स को बहुत ही ब्रेवली फेस करती है और उनको ओवरकम भी करती है। जब वीरा अपने सेक्सुअल अब्यूज के बारे में महावीर को बताती है, शी फेसेस हर डीमंस, अ ब्यूटिफुल जर्नी टू सी इन दिस फिल्म। तो बाबू मोशाय, अगर आपको भी हिंदी सिनेमा के किसी कैरेक्टर के थ्रू वो मोमेंट ऑफ करेज मिला है, देन डू शेयर इट विद मी, MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ट्रेंडिंग 5 जून को रिलीज होने वाली अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के मेकर्स ने ऑडियंस के लिए ओपनिंग डे ऑफर रोल आउट किया है, जहां आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है ऑन टिकट्स। देखिए किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा वो मैं नहीं बता सकती है आपको, वरना वो अनपेड प्रमोशन हो जाएगा ना। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 50% डिस्काउंट जो है वो वैलिड है ऑन टिकट्स प्राइस्ड अप टू ₹200। इनफैक्ट अगर आप एक नहीं दो टिकट्स लेते हैं तो ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। बाकी ये जो ओपनिंग डे कलेक्शन को बेटर और हेल्दियर बनाने के लिए लोगों ने टिकट्स पे डिस्काउंट लगाना शुरू कर दिया है, इस क्वाइट शाना है ना। ऊंचा लंबा कद फॉरएवर सुना या देखा आपने? भाई आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद दिस सॉन्ग जो रिलीज हुई है फ्रॉम दिस अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल। माइंड यू ये रिक्रिएटेड वर्जन है ऑफ 2007 का सुपरहिट ट्रैक पिक्चराइज्ड ऑन कटरीना एंड अक्षय कुमार, जिसमें इस बार कटरीना की जगह पे बस एक चीज बदल गई है, दैट इज दिशा पाटनी एंड ऑफ कोर्स द एंटायर फील ऑफ द सॉन्ग। क्योंकि भाई जो बेंचमार्क वेलकम के उस गाने ने सेट किया था उस तक तो नहीं पहुंच पा रही बात। बाकी अहमद खान डायरेक्टोरियल ये फिल्म 26th ऑफ जून को रिलीज होगी। बट माई टू सेंट्स ऑन दिस रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ सॉन्ग्स इज कि आज 19 साल पहले के गाने को अगर रिक्रिएट किया जा रहा है तो अगले 20 साल बाद किन गानों को रिक्रिएट किया जाएगा, सोचने वाली बात है। Can't wait for the mystery to unfold. मैं बात कर रही हूँ दृश्यम 3 की, जिसको ऑफिशियली रैप कर दिया गया है, I mean, इसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। सो अजय देवगन एंड तबू की ये जो मच अवेटेड थ्रिलर है इज नाउ ऑल सेट टू हिट द बिग स्क्रीन्स ऑन द 2nd of October, जिसके लिए आई एम श्योर हर वो इंसान जिसने ये फ्रेंचाइजी देखी है वुड बी वे टू एक्साइटेड फॉर। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड। इट्स ऑन।

दोस्तों मिड वीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिड वीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज्यादा चाय पीता है और सबसे ज्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिड वीक में ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिड वीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिड वीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो.
3: हाय शिवानी.
2: हाय.
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे.
2: वन सेकेंड.
3: चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. हाँ? अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा. शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ
3: शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विथ फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट अ स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टैमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है, और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी, और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मज़ेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली। और वही सुनते हैं अभी, लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और पंजाबी तड़का ढोल एनर्जी यानी नगाड़ा नगाड़ा। जी हाँ, एक ऐसा सेलिब्रेशन एंथम है फ्रॉम द वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। मतलब यार ये एक ऐसा एल्बम है ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और शाहिद ने जब इस गाने की शूटिंग की थी ना, तो उस टाइम पे ना उन्होंने अपने शूज़ के अंदर एक कॉटन रखवाई थी, क्योंकि स्टेप्स इतने ज़्यादा विगरस थे और इस गाने की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उनके पैर इतने ज़्यादा गर्म हो जाते थे कि बस उनको लगता था कि बस अब एक कॉटन रख दो ना तो एकदम राहत मिल जाती थी, क्योंकि गाने का बाउंस, गाने का ठहराव और गाने का फनी कुछ ऐसा था। वैसे यार ये गाना जो सोनू निगम की आवाज़ में गाया गया है इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ जब वी मेट, बट दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि आपका जब वी मेट का फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। लेकिन इस शाम की शुरुआत करते हैं विद नगाड़ा नगाड़ा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गाने शादी में बज जाते हैं और फिर डांस फ्लोर की हिस्ट्री बन जाते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। जब वी मेट के एल्बम के बारे में बात हो रही है और इसका गाना मौजा यार कभी भी सुन लो मौज ही लेकर आता है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैक है ना जहाँ मीका सिंह की वॉइस ने लिटरली पार्टी को इग्नाइट कर दिया था। और एक बहुत ही मस्त बात है इस गाने की, मतलब इसका जो हुक स्टेप है उसको कोरियोग्राफर ने ऑन द स्पॉट क्रिएट किया था, क्योंकि यार शाहिद कपूर और हमारे जो करीना कपूर खान है वो इतने ज़्यादा हाइपर फन मोड में थे कि यार उनको देख के उन्होंने जो ओरिजिनल कोरियोग्राफी थी वो कैंसिल करके नई कोरियोग्राफी ऑन द स्पॉट बनाई, और उनके कैरेक्टर्स को मैच करने जैसी जो उनकी एनर्जी थी उस एनर्जी को मैच करने जैसी उन्होंने कोरियोग्राफी बनाई थी। और तभी तो यार ये गाना 2007 से लेकर आज तक हर ढोलकी, हर संगीत, हर आफ्टर पार्टी का VIP मेंबर बन चुका है। जैसे क्या आपने मज्जा ही मज्जा पे कभी डांस किया? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं मज्जा ही मज्जा फ्रॉम वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है और जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल सुनते हैं जब वी मेट का मजा ही मजा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हेलो
2: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड कर रहे हैं एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
1: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: सामान
2: उठवा
1: क्या मजाक कर रहा
2: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो,
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी बात फिट होने की होती है या जिम जाने की होती है तो हम सिर्फ बाइसेप्स बढ़ाने के लिए नहीं जाते, हमें चाहिए होती है कोर स्ट्रेंथ। और वैसे ही लाइफ में ना सिर्फ सैलरी ही काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए होती है फाइनेंशियल फिटनेस। और जब फाइनेंशियल फिटनेस स्ट्रांग होती है ना, तभी होम बाइंग सिर्फ एक सपना नहीं रहता, एक प्लान्ड स्मार्ट मूव बन जाता है। और इसी स्मार्ट प्लानिंग के बारे में आज और भी जानकारी हमें देंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बात हो रही है ऐसे एल्बम की जो 2007 में रिलीज हुई थी, जब वी मेट, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और फिलहाल बात हो रही है एक ऐसे गाने की जो आपको सीधा मनाली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जी हाँ, श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये इश्क हाय, ये सुनते ही लगता है कि मनाली की सारे रोड्स सडनली म्यूजिकल हो चुके हैं। कि श्रेया घोषाल की प्लेफुल वॉइस के साथ शूटिंग के सेट्स पर भी एक्चुअल ढोलक वाले लोकल्स ज्वाइन हो गए थे, और इसीलिए इस गाने में एक रॉ पहाड़ी एनर्जी है। वैसे यार करीना को तो वन टेक गीत कहा जाता ही है, लेकिन इस सॉन्ग को सुनने के बाद ना हर एक इंसान के दिल में, हर एक लड़की के दिल में गीत डांस जरूर करती है। वैसे कि आपको भी ये गाना पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार इतने सारे हिट एल्बम्स है और ये जो हिट एल्बम है जब वी मेट, उसके इतने सारे खूबसूरत गाने, तो ऐसा भी कोई गाना है जो आप यहाँ पर प्ले करवाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताना। और फिलहाल बजाते हैं ये इश्क हाय राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉड, ये तो बता तू है कौन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है जब वी मेट के उस ऐतिहासिक एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, लेकिन इस गाने की एक मेलोडी ऐसी है जो शब्दों के बिना भी ना एक कहानी सुना देती है। जी हाँ, बात हो रही है जब वी मेट के आओगे जब तुम गाने की। इतना ब्यूटीफुल सा गाना है ये, और ये गाना ना सिर्फ एक गाना नहीं लगता बल्कि एक दुआ जैसा लगता है। उस्ताद राशिद खान की क्लासिकल डेप्थ ने इस ट्रैक को प्योर सिनेमा का हार्टबीट बना दिया। वैसे शूटिंग के दौरान जब करीना बारिश में खड़ी थी तब क्रू बोलती थी कि यार एक मोमेंट ऐसा आया था जहां बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ हो गया था, पर तब हवा की आवाज़ मेलोडी बन गई थी और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक का फील दे रही थी, और इसी के दौरान उन्होंने शूटिंग की थी। तभी तो यार लोग कहते हैं कि ये गाना किसी के वापस आने का सबसे खूबसूरत तरीका है, किसी को याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। तो चलिए, अगर आपके भी अंगना में फूल खिलते हैं जब कोई खास आपके अंगना में आता है, तो आपके लिए ये अगला गाना आओगे जब तुम साजना फ्रॉम जब वी मेट। वैसे आप ही मुझे बता सकते हो जब वी मेट का आपका फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, और आपके लिए जब वी मेट का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virva la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा।
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात,
3: बात
2: सुन, पहले बात सुन।
3: हाँ सर।
2: और ऐसा बंद करिए, बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है। सर बोलिए।
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। देखिए, जून का महीना तो शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट आधा साल खत्म हो चुका है। जैसे कुछ लोग ना इस जो टाइम है, स्पेशली जून या जुलाई का जो टाइम होता है, उसको ना एक सेकेंड इनिंग्स मानते हैं साल का, कि यार चलो ठीक है, जो रेजोल्यूशन साल की शुरुआत में किए थे वो नहीं टिक पाए, तो वाई नॉट हैव अ रिवैम्प ऑफ दीज। तो ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी रेजोल्यूशन बहुत सारे लोगों ने किए थे और साल किस तरह से ऊपर नीचे रहा ये तो सबने देख ही लिया। लेकिन हमारे गोल्डन आर में, यहां पर जहां पे होती है गोल्ड की बातें, हमारे गोल्ड डिकोडर सीरीज में थोड़ी चमक थोड़ी समझ विद आर गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स, तो उन्हीं से पूछते हैं कि यार बहुत सारे लोगों ने साल के स्टार्टिंग में कुछ रेजोल्यूशन किए थे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, स्पेसिफिकली गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, वो तो काफी उथल पुथल हुए हैं, लेकिन अभी नया जो हाफ ईयर जो बचा हुआ है उसमें किस तरह से अपने गोल्ड परचेजेस को स्ट्रेटेजाइज किया जा सकता है, तो चलिए स्वागत करते हैं बॉबी जी का। नमस्ते बॉबी जी, स्वागत है आपका आज के इस खास शो में।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी एंड योर फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड हैप्पी इवनिंग टू एवरीवन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो आपका सेकंड हाफ है आफ्टर द ब्रेक वाली सीरीज में, फोर गोल्ड $4,430 पर ट्राई अउंस, अबाउट $100 पर ट्राई अउंस पिछले वीकेंड से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड कर रही है। सो अच्छी बात यह है कि जो सोच रहे थे कि शायद मौका चूक गया है, अभी भी गाड़ी स्टेशन पे है। You can invest in gold at $4,430 per troy ounce. और सिद्धि जी, जैसा हम बोलते आए हैं कि हर डिप के साथ एक एंट्री पॉइंट बनता है
0: जी।
1: हर डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ एक एंट्री पॉइंट बनता है, तो हमें लगता है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो $4,430 एक एंट्री पॉइंट के लिए गोल्ड में करेक्शन है पिछले एक वीक से। एंड आई थिंक जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से गोल्ड अभी हेड ऊपर नहीं कर रहा है और इससे पहले ऊपर जाए, जो आपका सेकेंड सवाल है कि आप उसे कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। देखिए, बहुत सारे लोग बॉन्ड्स लेते हैं, गोल्ड ऑनलाइन खरीदते हैं जो फिजिकल गोल्ड नहीं होता, और उसके अंदर कई बार वो छोटे छोटे हिस्सों में खरीदते हैं जैसे जैसे उनके पास सिद्धि जी पैसे अवेलेबल होते हैं, या जब उनको फंड्स की अवेलेबिलिटी मिलती है वो गोल्ड में उस दिन के भाव से गोल्ड खरीदते हैं, डस नॉट मैटर वो क्या प्राइस है। मुझे लगता है राज ज्वेल्स के पास एक बेटर फाइनेंसिंग ऑप्शन है
0: जी,
1: जिसमें जैसे आज गोल्ड का प्राइस गिरा हुआ है $4,430 पर ट्राई अउंस, आपको इंतजार नहीं करनी है कि आपको जब पैसे अवेलेबल होंगे तब गोल्ड खरीदना है। राज ज्वेल्स के फाइनेंसिंग ऑप्शन में आप गोल्ड आज इन्वेस्ट करें, आज ज्वेलरी गोल्ड की घर लेके जाए और अपने प्लान के हिसाब से, जैसे आपको लगता है कि हर महीने मेरे पास $500 एक्स्ट्रा होने वाले हैं या $1,000 पर मंथ एक्स्ट्रा होने वाले हैं जो मैं एलोकेट कर सकता हूं इस पेमेंट के लिए, तो $9,000 का गोल्ड आप उस दिन तक इंतजार ना करें जब आपके पास पैसे अवेलेबल हो, क्योंकि उस दिन गोल्ड का प्राइस शायद ज्यादा हो सकता है, सिचुएशन फेवर में नहीं हो सकती है। लेकिन आज घटे हुए गोल्ड प्राइस में वो खूबसूरत सी ज्वेलरी लेके जाएं और बिना किसी इंटरेस्ट के गोल्ड में इन्वेस्ट करें। सो सिद्धि जी, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे आप अपने पैसे से करें, लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े हर महीने देके और उसकी इंतजार करते हैं कि फाइनली जब मेरे पैसे लमसम इकट्ठे हों तब मैं उस डील को लॉकडाउन करूं और गोल्ड का प्राइस फिक्स करूं, उसके अंदर मुझे लगता है कि हो सकता है गोल्ड आपके फेवर में ना हो और गोल्ड का प्राइस ट्रेंड पर हो। राज ज्वेल्स की डील में ये बेनिफिट है कि हम 0% पे आज आपको ज्वेलरी घर ले जाने देते हैं और आप अपनी कन्वीनियंस से 9 इंस्टॉलमेंट में वो धीरे धीरे पैसे देते हैं। सो बड़ी से बड़ी चीज बहुत छोटी सी सरलता से आपकी बन जाती है। गोल्ड प्राइस जिस दिन आपको पसंद आए उस दिन का प्राइस आके आप लॉक करें, परचेज करें और उस दिन से आपकी 9 मंथ की इंस्टॉलमेंट शुरू होती है। तो देखिए, गोल्ड में तो इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, चाहे वो 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हो, 18 कैरेट कलर्स डायमंड ज्वेलरी हो, जीआई सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड हो, राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन समझने के लिए जिसमें सोने के भाव हिंदुस्तान से किस तरह से अमेरिका में सस्ते हैं वो समझने के लिए राज ज्वेल्स की टीम से जरूर कनेक्ट करें। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। देखिए दोस्तों, जिस तरह से बॉबी जी हमें गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाते हैं, स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प करते हैं, शायद ही ये इन्वेस्टमेंट एनालॉजी आपको कहीं और मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो हाफ ईयर जो बचा है उसके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आज विजिट कीजिए rajjewels.com। और हमारी जो ये खास गोल्ड डिकोडर सीरीज है ऐसी ही जारी रहेगी। और आपका भी कोई सवाल है तो हमें जरूर भेजिए @rjmirchisiddhi@sidhihidm जरूर कीजिए। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और एक ऐसे ही एल्बम के बारे में बात हो रही है जब वी मेट। जी हाँ, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और आज इसी एल्बम के एक गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम इजलिन। प्रिया जी कहती है इजलिन से, इस एल्बम का जो एक गाना है तुमसे, ही मोहित चौहान की आवाज़ में, वो बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। क्योंकि जब भी वो लिंकन पार्क की शांति में होती है, उनके हाथ में गरम कोका होता है, तब बैकग्राउंड में वो यही गाना सुनती है तुमसे ही। क्योंकि यार उसमें एक लाइन है कि मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही। और वो अपने हस्बैंड को ये जो लाइन है वो डेडिकेट करना चाहती है। बड़ा ही फिल्मी मोमेंट है। जी हाँ प्रिया जी। और दोस्तों वैसे एक बहुत ही खास बात इस गाने की, मतलब यार जब मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना गाया गया था, एक हल्की सी हंसी जो उन्होंने लाई थी इस गाने में, जैसे कि कोई बहुत ही शांति से किसी का नाम ले रहा हो। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे मोहित चौहान जी माइक से थोड़ा दूर हो गए थे ताकि वॉइस में वॉकिंग इन द रेन वाली फीलिंग आ जाए। और शायद इसीलिए ये गाना लगता है कि यार इवन दो तुम तन्हा कहीं चल रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा वो अपना साथ ही चल रहा है। तो आप भी बताइए कि आपको ये गाना पसंद है, और ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार उस एल्बम का हर एक गाना बजाएंगे आपके लिए। और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, हर शहर का ना अपना एक मौसम होता है और हर मौसम के साथ एक खास याद जुड़ी होती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मौसम की बातें हो रही है तो यार, किसी को मौसम के नाम से ना मुंबई की बारिश याद आती है, भीगी सड़कें, कटिंग चाय और वो हल्की सी रश वाली फीलिंग। तो किसी को दिल्ली की सर्दी याद आती है, फॉग, स्वेटर्स और धूप सेकने वाली मॉर्निंग्स। और किसी को अपने होम टाउन की शाम, जहाँ हवा धीमी चलती थी और वक्त भी। तो तब याद आता है ये गाना जमाना लागे, जब वो लाइन आती है ना कि तुम्हारे शहर का मौसम, तो लगता है कि किसी एक जगह का नहीं, एक एहसास का जिक्र हो रहा है। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों कि शहर बदल जाते हैं पर उनके मौसम दिल में रह जाते हैं। तो आप भी बताओ कि आज के मौसम के हिसाब से आपको किस शहर की याद आ रही है। टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि जिस भी शहर की याद आ रही हो, ये गाना आपको शहर तक जरूर लेके जाएगा। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, जैसे वक्त बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वैसे बॉलीवुड का म्यूजिक फ्लेवर भी बदल रहा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जो 90s एंड 2000s में मेलेडी और लिरिक्स डोमिनेट करते थे, आज के वक्त में प्रोडक्शन, बीट्स और ग्लोबल साउंड इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ चुका है। जी हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब भी कोई सोलफुल गाना आता है ना, इंस्टेंटली हिट हो जाता है। मतलब ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, इमोशंस अभी भी किंग है। तो आप भी बताना, आप भी कौन सी ऐसी ओल्ड स्कूल मेलेडी पसंद करते हो जो आज के न्यू एज बीट्स को भी बीट कर दे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी पसंद की ओल्ड स्कूल मेलेडी ये रही आपके लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हाय शिवानी.
3: हाय
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा.
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
3: हाँ?
4: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी.
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज.
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना. शिवानी मेरी बात सुनो,
3: नहीं नहीं,
4: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
3: कुकड़ू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल.
6: रेट्रो मैजिक और डांस फ्लोर एनर्जी के साथ सुनो चुनरी चुनरी, लेट्स गो.

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑन। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Sham Shada, let's do not donkey, have a funky time.
2: हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है रश्मिका मदाना की थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ 1 टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते आपके लिए राइट योर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

करेंगे सबका स्वागत, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

जिंदगी का ब्रेकअप मोड ऑन हो या मेल्ट डाउन, एक रेट्रो बीट लगाओ ना तो लाइफ फिर से किक स्टार्ट हो जाती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेस लाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसंत बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरेशी को डांस करना है, और कहीं ना कहीं हुमा कुरेशी ने अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ कुड़ियो गुड़ किन खा लिया, गुड़ वाली चाह किन पीती, बुआ जी दा नाड़ा किन खिचया।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा एट @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।